अगले वाले अंत में भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। बेअंत इस मालिक खालिक को कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 5। आज का कार्यक्रम आधारित है श्री धर्मराज देशराज जी के काव्य संग्रहों पर। पेश करेंगे भारत सपोरी।

जब जहां से फरेब खाता हूं मां को अपने करीब पाता हूं, अपने ऐब हुनर छुपाता हूं मां को तालीम घर सा पाता हूं। सारा कुंबा है सिर्फ मां ही नहीं, खुद को कितना यतीम पाता हूं। मारती और खुद भी रोती थी, मां ही रब है तुम्हें सुनाता हूं। मां किसी की ना किसी से बिछड़े, रब से यही दुआ मनाता हूं। कोई पूछे कि रब को देखा है, मां की तस्वीर दिखाता हूं। आरती हो या मस्जिदों से अजां, ये सदा मां की ही बताता हूं। मां अनमोल होती है, मां का कोई पर्याय नहीं। ये शब्द जिस महानुभाव ने उकेरे हैं, उनसे हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे आज के कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 5 में। मुलाकात उनके लिखे गीत गजलों के माध्यम से। आज का कार्यक्रम आधारित है एक शिक्षा विद्वान जिनके नाम 15 पुस्तकों का काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, और ये है सीहोर मध्य प्रदेश से आदरणीय धर्मराज देशराज। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, और आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में, सुनाते हैं आपको और गजलें। पहले माँ के नाम ये गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। कार्यक्रम चल रहा है विदस्ता गीतमाला एपिसोड 5। श्री धर्मराज देशराज जी के काव्य संग्रह गजल के फूल, गजल जिंदगी है, सुबह तक गजल पर वो लिखते हैं, लहू जब दिल का बहाती है आंखें, छुपा दर्द दिल का सुनाती है आंखें, भला इससे बढ़कर करामात होगी, कई ख्वाब दिन में दिखाती हैं आंखें, यकीनन ही दिल से वो मजबूर होंगी, इशारे से जब भी बुलाती हैं आंखें, कभी शर्म से देखना छुप छुपा कर, कभी सोए अरमां जगाती हैं आंखें, कभी तो बरसती है बेखौफ होकर, कभी पास आकर लज जाती हैं आंखें, जमाने में आंखों से बढ़कर नहीं कुछ, ये एहसास रब का कराती हैं आंखें, धर्म अपनी आंखों में रब को बसा लो, कई जुर्म हमसे कराती हैं आंखें।

धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, आपके दिल में मेरे सिवा कौन था, मैं नहीं था अगर तो भला कौन था, डूबने से बचाया यही कम नहीं, अब खुदा कौन था ना खुदा कौन था। फर्क साकी ने कुछ न किया बज्म में, कौन खुशहाल था गमजदा कौन था, जिसने हंसना सिखाया मैं सोचूं उससे, आदमी कौन था और खुदा कौन था। दोरे गर्दिश में जिसने दिया हौसला, उस समय मेरे रब के सिवा कौन था। हाथ दिल पर जरा रख के सच सच बता, चाहता कौन था पूजता कौन था, जिसने जख्मों पे नश्तर चलाए धर्म, पूछते हैं वही बेवफा कौन था।

धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, अभी तो जख्म दिखलाने के दिन है, मोहब्बत क्या है समझाने के दिन है, गरीबी मत चुरा बचपन हमारा, हमारे खेलने खाने के दिन है, चलो दुश्मन से कर लें दोस्ती हम, यही तो होश में आने के दिन है, मोहब्बत नामे रब है इस जहां में, यही दुनिया को समझाने के दिन है, अभी गर्दिश में तारे हैं हमारे, अभी यारों के मुस्काने के दिन है, जमाने भर का मालिक एक ही है, यही तो बात मनवाने के दिन है। धर्म, तालीम घर में डांटना मत, मोहब्बत से ही समझाने के दिन है।

धर्मराज देशराज जी आगे लिखते हैं, जो गजल आपको सुनाई थी जिंदगी भर की वो कमाई थी, उनको हमने भुला दिया कब का, भूल जाने में ही भलाई थी। दर्द दिल में था आंख में आंसू, मुस्कुराने में जग हंसाई थी। मौत से क्या गिला करें आखिर, जिंदगी चीज ही पराई थी। अश्क आंखों में आ गए मेरी, उसने इतनी खुशी जताई थी। वो ख्यालों में आ गए आखिर, दिल ने आवाज भर लगाई थी। बेवफा को धर्म सुना छिपकर, उसके लब पर मेरी रुबाई थी।

धर्मराज देशराज जी लिखते हैं, हमने जब अपना फायदा देखा, खुद की नजरों से खुद गिरा देखा, हमने जब जब भी आईना देखा, आंख में खून का बुलबुला देखा, एक दूजे पे जान दे देना, इश्क का यही कायदा देखा, बिन कहे वो पुकार सुनता है, हमने ऐसा भी फलसफा देखा, मेरी हस्ती मुझे मालूम हुई, जब सितारे का टूटना देखा, उनको हंसने में लुत्फ आता है, हमने रोने में भी मजा देखा, चंद सिक्कों में बिक गए सारे, मेरे अपनों को क्या से क्या देखा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वितस्ता गीतमाला एपिसोड 5। आज का एपिसोड आधारित था श्री धर्मराज देशराज जी के काव्य संग्रहों गजल के फूल, गजल जिंदगी है व सुबह तक गजल पर। रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशित व प्रस्तुतकर्ता भारत सपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेश।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

झाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं।

हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो? छेड़ने वाले तुमको और भी हैं।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, हम सफर जिंदगी का

आवाज की दुनिया के दोस्तों को नरेश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं अक्सर आपको अपने मित्र डॉक्टर कौशल किशोर की रचनाएं सुनाता हूं और आज भी उन्हीं की एक रचना जो उनके द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। थोड़ा गंभीर विषय है परंतु विचारणीय है। कई लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ होता है। आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, लेकिन ये सच्चाई सभी के ऊपर लागू है। भाई, जीवन मर्यादित है और उसका जब अंत होगा ना, तब इस लोक की कोई भी वस्तु साथ नहीं जाएगी। फिर ऐसे में कंजूसी करके पेट काट कर बचत क्यों की जाए? आवश्यकता के अनुसार खर्च क्यों ना करें? जिन बातों में आनंद मिलता है ना, वो करनी चाहिए। हमारे जाने के पश्चात क्या होगा, कौन क्या कहेगा, इसकी चिंता छोड़ दें। क्योंकि देह के पंच तत्व में विलीन होने के पश्चात कोई तारीफ करे या टीका टिप्पणी करे, क्या फर्क पड़ता है? और कोरोना काल में तो चार कंधे भी गायब हो गए हैं। उस समय जीवन का और महत्व प्रयासों से कमाए हुए धन का आनंद लेने का वक्त निकल चुका होगा। अपने बच्चों की जरूरत से अधिक फिक्र ना करें, उन्हें अपना मार्ग खुद खोदने दें, अपना भविष्य स्वयं बनाने दें। उनकी इच्छा, आकांक्षाओं और सपनों के गुलाम आप न बने, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव ही रहें। बच्चों पर निश्चित तौर पर प्रेम करें, उनकी परवरिश करें, उन्हें भेंट वस्तुएं भी दें, लेकिन कुछ आवश्यक खर्च स्वयं अपनी आकांक्षाओं पर भी करें। जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ कष्ट सहते रहना ही जीवन नहीं है, यह भी ध्यान रखें। आप 4 या 5 दशक पूरे कर चुके हैं, इसलिए जब जीवन और आरोग्य से खिलवाड़ करके पैसे कमाना अनुचित है, क्योंकि अब इसके बाद पैसे खर्च करके भी आप आरोग्य जीवन नहीं खरीद सकते। इस आयु में 2 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पैसा कमाने का कार्य कब बंद करें और कितने पैसे से अब बचा हुआ जीवन सुरक्षित रूप से कट जाएगा। आपके पास यदि 1000 एकड़ उपजाऊ जमीन भी हो ना, तो पेट भरने के लिए कितना अनाज चाहिए? अनेकों मकान हो आपके पास, तो रात में सोने के लिए तो एक ही कमरा चाहिए ना। एक दिन बिना आनंद के बीते तो आपने जीवन का एक दिन कमा दिया, और एक दिन आनंद में बीता तो एक दिन आपने कमा लिया, ये ध्यान रखें। एक और बात, यदि आप खिलाड़ी प्रवृत्ति के और खुश मिजाज हैं, तो बीमार होने पर भी बहुत जल्द स्वस्थ होंगे, और यदि आप प्रफुल्लित रहते हैं तो कभी बीमार नहीं होंगे। और महत्वपूर्ण ये है कि अपने आसपास जो भी अच्छाई है, शुभ है, उदात है, उसका आनंद लें, उसे संभाल कर रखें। अपने मित्रों को कभी ना भूलें, उनसे हमेशा अच्छे संबंध बना के रखें। इसमें अगर सफल हुए तो हमेशा दिल से युवा रहेंगे और सबके चहेते बने रहेंगे। मित्र ना हो तो अकेले पड़ जाएंगे और ये अकेलापन बहुत भारी पड़ता है, इसलिए रोज व्हाट्सएप के माध्यम से या जो भी माध्यम उपलब्ध हो एक दूसरे के संपर्क में रहें, हंसते हंसाते रहें, एक दूसरे की तारीफ करें। जितनी भी आयु बची है उतनी आनंद में व्यतीत करें। प्रेम मधुर है, इसकी लज्जत का आनंद लें। क्रोध घातक है, उसे हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दें। संकट क्षणिक होते हैं, उनका सामना करें। पर्वत शिखर के परे जाकर सूर्य वापस आता है, लेकिन दिल से गए हुए
प्रियजन कभी वापस नहीं आते। रिश्तों को संभाल के रखें, सभी में आदर और प्रेम बांटें, नहीं तो जीवन क्षणभंगुर है, कब खत्म होगा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आनंद ले, आनंद ले, आनंद ले। दोस्त और दोस्ती को संभाल के रखें, जितना हो सके उतना गेट टुगेदर करते रहें, अपने तरीके से जिंदगी का पूरा भरपूर आनंद उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

फिर छू ले उसे। मैं तुम्हारे कदमों को नाप लूं अपनी उंगलियों से, कुछ फासले रहने दूं और कुछ मिटा दूं, शायद ये बचे फासले मुझे तुम्हारे करीब आने को कहें, ताकि मैं इन्हें अपना कर आने वाले कल के सपनों को साकार कर सकूं। तुम्हारा आंचल मखमली उम्मीदों से भर दूं। आओ आओ चले दूर तक, वहां तक जहां जमीन और आसमान का मिलन हो अपनी तमन्नाओं के साथ।

सहमा पर बेवजह परेशान यूं ही बिखरा बिखरा अपने अतीत को याद करता, अपनी परछाई से कई बार सवाल करता, रूहों के सफर के रहस्य को जानने की कोशिश करता। वक्त से पहले जो लोग चले जाते हैं उनके अपनों के दुख में शामिल होना, कुछ ऐसे एहसासात, कुछ ऐसे जज्बात जो मेरे साये को घेर लेते हैं, जकड़ लेते हैं और नोच लेते हैं बेवजह।

क्यों न लड़खड़ाएं। इन अंधेरों में मैं तुम्हें संभाल लूं और तुम मुझे संभाल लेना। दूर तक चले हम साथ साथ, उम्मीदों के चिराग रोशन करें ताकि एक नई सुनहरी सुबह हमें अपनी बाहों में समेट ले। भूल जाए बीते मौसम की यादों को जब तुम तन्हा थी और मैं भटकता मुसाफिर। क्यों न इस मौसम में याद करें ढलती शामों को, सुरमई उजालों को, रात की नर्म मिजाजी को, तुम्हारी मासूम अदाओं

तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को नजदीकियों में तब्दील करने की कोशिश करें, फिर से इस खामोश पानी में पत्थर फेंकें ताकि इन लहरों का मिलन साहिलों से हो। आओ इन बादलों को अपनी मुट्ठी में कैद करें और फिर से पहले ही की तरह बारिश में भीग जाएं। मैं तुम्हारी हथेली में अपना अक्स ढूंढ लूं ताकि अपनी बिखरी सूरत संवार सकूं। आओ हम दोनों आज ये अहद करें कि नहीं बिछड़ेंगे फिर से कभी, और तुम्हारे मेरे दरमियान इन फासलों को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहें।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 6। आज की फिल्म है काला पत्थर। कार्यक्रम पेश करेंगे राहुल अलियान। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान। लेकर आया हूं कार्यक्रम फिल्मी किस्से का एपिसोड 6 और पहली बार मेरी आवाज में। उम्मीद करता हूं आपको ये अंक अच्छा लगेगा। इस प्रोग्राम में हम बॉलीवुड की कोई मशहूर फिल्म का चयन करते हैं जिसके फिल्मी किस्से आपको सुनाते हैं और इसी फिल्म के गीत भी। आज हम बात करेंगे फिल्म काला पत्थर की। फिल्म काला पत्थर जो 1979 में बनी थी, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित किया था, हिंदी सिनेमा की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह और प्रवीण बाबी जैसे बड़े सितारे थे। फिल्म की कहानी कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी और उनके संघर्षों पर आधारित थी। आइए सुनाता हूँ इसी फिल्म का एक मशहूर गीत, उसके बाद इसी फिल्म के फिल्मी किस्से भी। बने रहिए हमारे साथ।

अमिताभ बच्चन का किरदार विजय एक ऐसा इंसान था जो अपने अतीत के बोझ से जूझ रहा है। यह किरदार वास्तविक जीवन में चासलाना खदान दुर्घटना जो 1975 में हुई थी से प्रेरित बताया गया था। इस घटना में सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई थी। फिल्म की कहानी उस दर्दनाक घटना और मजदूरों के जीवन संघर्षों को दिखाने की कोशिश करती है।

कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच असल जिंदगी में कुछ अनबन थी, लेकिन फिल्म के दौरान उन्होंने पेशावर तरीके से काम किया। यह पहली बार नहीं था जब अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ काम किया, लेकिन इस फिल्म में उनकी बॉन्डिंग को खास सराहा गया। सेट पर भी इनके बीच का दोस्ताना माहौल चर्चित रहा।

काला पत्थर एक आलोचनात्मक सफलता थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। हालांकि समय के साथ इसे एक क्लासिक फिल्म माना गया। फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने असली कोयला खदानों का इस्तेमाल किया। शूटिंग धनबाद और आसपास के इलाकों में हुई, जिससे फिल्म को एक प्रमाणिक लुक मिला। कोयला खदानों में शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वहां का माहौल बेहद कठिन था।

गाने उतने लोकप्रिय नहीं हुए, लेकिन इसके डायलॉग जैसे अमिताभ बच्चन का संवाद हमारे नाम से कोई बदनसीब जुड़ा है काफी मशहूर हुआ। फिल्म का संगीत राजेश रोशन ने दिया था। शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार फिल्म की जान माना जाता है। उनके दमदार डायलॉग और अलग अंदाज दर्शकों को खूब भाया। कहा जाता है कि उनके किरदार को फिल्म में खास तौर पर जोड़ा गया ताकि मसाला एंटरटेनमेंट बढ़े।

काला पत्थर केवल एक ड्रामा फिल्म नहीं थी, यह मजदूरों की दुर्दशा और पूंजीपतियों के शोषण पर एक तीखी टिप्पणी भी थी। फिल्म ने समाज में मजदूर वर्ग की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। यह फिल्म आज भी उन दर्शकों के दिलों में खास जगह रखती है जो समाज के जमीनी मुद्दों को सिनेमा के जरिए समझना पसंद करते हैं।

इसके साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूँ अगले एपिसोड में किसी और फिल्म के साथ। आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 7056413010 पर, या आप मेल भी कर सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से और आज की फिल्म थी काला पत्थर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राहुल अलियान ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी अंक 4। आज की मेहमान है कवित्री सविना वर्मा। प्रस्तुत करेंगे भरत सोपोरी।

0: आप सभी का स्वागत करता हूं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। आज आपका ये रेडियो दोस्त भारत सोपोरी लेके आया है शेरो शायरी की महफिल, कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 4 में। उम्मीद है कि आज के आमंत्रित मेहमान आपके लिए जो कविता पाठ करेंगे उससे आप अपने जीवन के साथ जुड़ा पाएंगे, क्योंकि संघर्ष से तब के जो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो अपने कविताओं से और अपने काम से आपको सराबोर करते हैं। आइए आपके साथ रूबरू करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान और स्वागत करते हैं इन पंक्तियों से। स्वागत करता हूं अतिथि देवो बाबा, कहती ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा। आज के आमंत्रित मेहमान हैं सविना वर्मा। सवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन रेडियो वितस्ता के इस स्टूडियो में।
1: भारत जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, सभी सुनने वाले को नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 4 लाइनों से अपना आगाज करूंगी। मेरी जिंदगी एक पहेली रही है, मेरी जिंदगी एक पहेली रही है, उदासी मेरी बस सहेली रही है, यूं तो बहुत दोस्त थे साथ अपने, मगर ये सभी तो अकेली रही है, मगर ये सभी तो अकेली रही है।
0: क्या बात। हम सवि जी और हमारी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर हुई है। कृपया आप अपने बारे में एक मुख्तसर सा परिचय दें ताकि श्रोताओं से आप परिचित हो जाएं।
1: जी, मेरा जन्म चंडीगढ़ में ही हुआ और चंडीगढ़ में ही शिक्षा दीक्षा हुई। बहुत ही खूबसूरत माहौल हुआ करता था चंडीगढ़ का उन दिनों, आज तो बहुत ज़्यादा रश हो गया। उन दिनों बहुत शांत सड़कें हुआ करती थी, झील का किनारा हुआ करता था शांत। और चंडीगढ़ में जब हम गए तो बहुत छोटी थी मैं, करीब 2 महीने की, तो मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। बड़ी संघर्षों के साथ मेरी मम्मी ने हमारी परवरिश की।
0: वैसे भी कहा जाता है कि जो माँ होती है वो हम सबको जोड़ के रखती
1: जी,
0: है।
1: आपने वही मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जरूर पिताजी मेरे पूरे हो गए थे, लेकिन परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हमारी माँ ने हम तक पहुँचने नहीं दी। उनके बारे में यही मैं आज भी सोचती हूँ कि वो उन्होंने कैसे किया होगा, तो परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हम तक नहीं पहुँचने दी। हालांकि उन्होंने, अब सोचती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशानियाँ देखी होंगी, देखी। आज मुझे जब याद आता है उनके बारे में तो सोचती हूँ मैं कि बहुत परेशानियाँ उन्होंने झेली, हम बहुत छोटे छोटे थे।
0: सवि जी, आपका जीवन कैसा रहा है जब आप किशोर अवस्था में थे? क्या शेरो शायरी का माहौल था घर में?
1: जी, मेरे भाई उस वक्त, हालांकि वो भी बहुत छोटे थे, वो लिखा करते थे
0: जी,
1: गाया करते थे
0: जी।
1: अपनी पार्टी थी उनकी, जागरण पार्टी थी उनकी, ऑर्केस्ट्रा पार्टी थी, जगराते किया करते थे उस वक्त वो। और बहुत ही छोटी उम्र में अंबाला में भी उन्होंने प्रोग्राम किया काका बल्ली के नाम से।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, वैसे बलराज बल्ली नाम है उनका, वैसे पहले गुरु मेरे वही हैं
0: जी।
1: खुद बहुत लिखा करते थे, बहुत अच्छा गाया करते थे। एक फिल्म आई थी दारा सिंह की, भक्ति में शक्ति
0: जी,
1: उसमें उन्होंने काम भी किया।
0: हम्म,
1: कई फिल्मी हस्तियों के साथ उन्होंने काम किया, तो बहुत सारे नाटकों में काम किया चंडीगढ़ में उन्होंने।
0: अच्छा।
1: तो शायद मैं उनको देखती थी और उनके जैसा बनने की कोशिश करती थी
0: जी,
1: लेकिन ये बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें इजाजत नहीं थी कुछ भी करने की। हम स्टेज शो देखा करते थे, स्टेज पे जाया करते थे, गाने सुना करते थे, प्रोग्राम्स देखा करते थे, लेकिन उसका हिस्सा बनने की इजाजत हमें नहीं थी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा।
0: तो घर में इस तरीके का माहौल था जहां संगीत भी चलता था, सब कुछ चलता था।
1: हाँ जी।
0: तो ऐसा क्या कारण था कि जो आप नहीं उसका हिस्सा बन पाए?
1: बस उस वक्त लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था।
0: अच्छा, ऐसा माना जाता था कि शायद ये लड़कियों के लिए सही नहीं है।
1: हाँ जी, मैं लिखा भी करती थी तो बस छुप छुप के लिखा करती थी, लिख के कहीं छुपा दिया, कभी वो मिला ही नहीं कहाँ गया, कभी फाड़ दिया कुछ। वो बहुत छोटी उम्र होती है और कुछ भाव मन के उमड़ घुमड़ के कुछ इस तरह से आ रहे होते हैं कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते
0: जी,
1: खासकर अपने बहन भाइयों के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते
0: जी,
1: जो कि आजकल बहुत आसान हो गया, बच्चे सब कुछ अपने माता पिता को
0: इजिली
1: बता देते हैं
0: जी।
1: उस वक्त नहीं था ऐसा माहौल, तो शायद मैं सोचती थी कि जो मैंने लिखा है वो मेरे भाई को पसंद नहीं आएगा। मेरी माँ को पसंद नहीं आएगा, मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा, तो मैं छुप छुप के लिखा करती थी और कहीं छुपा दिया करती थी। कई बारी कोई पूछता था क्या लिखती है, तो मैं फटाफट फाड़ दिया करती थी उसे,
0: ताकि जो आपने लिखा है वो
1: कोई और ना पढ़ ले।
0: वो और ना पढ़ ले।
1: हाँ जी, तो कई बार मैं फाड़ दिया करती थी, कभी छुपा के रख दिया, कुछ डायरियां गुम भी गई इसी वजह से। तो बस ये बड़ा दुर्भाग्य था कि मैं दिखा नहीं सकती थी वो किसी को। हालांकि मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहती हूँ, काफी अभी कुछ ही समय पहले मेरे भाई साहब का इंतकाल हो गया, उससे कुछ समय पहले उन्होंने मुझे कहा कि तुम शादी से पहले कुछ लिखा करती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, तो क्या लिखती थी? तो मैंने कहा भाई तुम लिखने नहीं दिया करते थे, क्या आप सुनोगे? इस वक्त सुनोगे? अब मैं भी माँ बन चुकी हूँ।
0: जो आपने तब लिखा है?
1: जब तब लिखा था।
0: ओके।
1: हाँ जी, तो उसने कहा, पता नहीं किस मूड में था वो, तो उसने बोला हाँ मैं सुनूंगा, कुछ सुना मुझे।
0: ठीक है।
1: और बड़े ही उस वक्त मुझे गौरव फील होता है इस वक्त, वो मेरा क्योंकि पहला गुरु वही था
0: जी।
1: तो जब मैंने उसे अपना सुनाया, लिखा हुआ अपनी कुछ गजलें सुनाई, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अभी कहते हुए मुझे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कि वो मेरे पैर पकड़ के बहुत रोया। हालांकि मैं उससे बहुत छोटी हूँ, मैं उससे कम से कम 7 साल छोटी हूँ, वो मेरे पांव पकड़ के इतना रोया कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैंने तेरा लिखा हुआ उस वक्त पढ़ा नहीं, क्योंकि वो गजलें गाया करता था, लिख के खुद भी गजलें गाया करता था। वो कहने लगा कि आज उसने गाना वाना छोड़ दिया था, तो उसने कहा काश मैं ये गजलें तेरी पढ़ लेता तो मैं गाता इसको, तू और मैं कहां तक पहुंच जाते। तो उस दिन बहुत रोया, बहुत रोया। तो मुझे लगा मेरा पहला अवार्ड तो मुझे यही मिला,
0: जो सबसे बड़ा इनाम है,
1: जो उन्होंने स्वीकार कर लिया इस चीज को, तो मुझे ये लगा कि सबसे बड़ा इनाम मुझे तो ये मिल गया।
0: सभी जी, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कवि कवित्रियों को मैं जानता हूँ, और जो आपका जीवन का सफर है वो सबसे अलग रहा है। अलग इसलिए रहा है कि जब हमारे पास कोई क्षमता होती है, कोई कैपेबिलिटी होती है
1: जी।
0: कोई कला हम में होती है, तो पेरेंट्स या जो परिवार के सदस्य है वो उसको प्रोत्साहन देते हैं
1: जी।
0: पर आपकी जो जिंदगी का सफर है कि आप कहते हैं कि आपने जो लिखा आपने फिर फाड़ दिया उसको ताकि कोई उसको पढ़े ना।
1: हाँ जी।
0: तो और कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद आपके जो भाई साहब है उनको ये महसूस हुआ कि शायद हमने कोई गलती करी है कि हमने सभी जी को मौका नहीं दिया है।
1: हाँ जी।
0: लिखने का या बोलने का या खुल के सामने आने का। खैर, ये तो समय समय की बात होती है। आज आपका एक जाना पहचाना नाम है और आज आप लिखती हैं। मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप कोई ऐसी कविता सुनाएं जो आपके शुरुआती दिनों की हो या जो आपने भाई साहब को सुनाई हो।
1: जी, जो भाई साहब को सुनाई थी वो शायद ना सुना पाऊं मैं
0: जी।
1: मैं आपको ऐसे ही
0: जी
1: कुछ कविता पढ़ के सुनाती हूँ।
0: जी जी।
1: एक सीप कोई समंदर का, एक सीप कोई समंदर का, एक फूल किसी मंदर का, एक सितारा उस आसमान का, एक नजारा इस जहान का, एक झलक तेरे हुस्न की, एक महक मेरे इश्क की, एक इशारा तेरी नजरों का, एक सहारा मेरे अधरों का, एक तपिश तेरी उंगलियों की, एक कसक मेरी हथेलियों की, एक सच तेरी हां का, एक झूठ मेरी ना का, एक सुकून तेरी बाहों का, एक जुनून मेरी चाहों का, एक सपना तुझसे मिलने का, एक सपना संग चलने का, एक रंग तेरी होली का, एक तंज मेरी बोली का, एक वक्त तेरे आने का, एक वक्त तेरे जाने का, एक पल में जान आती है, एक पल में जान जाती है, एक सादा दिल सनम का, एक वादा अगले जन्म का, एक सादा दिल सनम का, एक वादा अगले जन्म का, एक कल था एक आज है, एक अफसाना एक राज है, एक पहेली है कवि की, एक सहेली है सवि की, एक तू एक तेरी तमन्ना, एक तेरा कहना एक मेरा सुनना,
0: क्या
1: एक
0: बात?
1: तेरा कहना एक मेरा सुनना। शुक्रिया।
0: ये शुरुआती दिनों में आपने लिखा है, और एक शायर के तौर पर आप मुझे ये बताइए कि जब आप कुछ लिख के उसको फाड़ देते थे तो क्या आपको अच्छा लगता था या बुरा लगता था?
1: नहीं, बहुत दुख हुआ करता था कि ये सच्चे जज्बात होते हैं उस वक्त
0: जी।
1: आज हम कुछ बहर में लिखते हैं
0: जी,
1: कुछ किसी को पढ़ के लिखते हैं, किसी को सुन के लिखते हैं, लेकिन वो खाली सपने जज्बात हुआ करते थे, वो किसी और उसमें कुछ मिलावट नहीं हुआ करती थी, कोई बहर नहीं हुआ करती थी, सिर्फ भाव हुआ करते थे। वो मुझे लगता है कि बहुत दुख भी हुआ था और आज भी बहुत दुख होता है सोच के कि मैंने क्या लिखा था।
0: और क्योंकि वो याद भी शायद नहीं
1: होगा, नहीं याद होते वो।
0: मुझे इसके साथ जुड़ा हुआ एक बात बताइए, एक कवि है या कवित्री है, उसको से रात वो सो रहे हैं और कुछ ख्याल आया, जग गए और कुछ ख्याल आया लिखने का, क्या उस कवि या कवित्री को सुबह तक इंतजार करना चाहिए या उसी समय उठ के वो लिखना चाहिए?
1: नहीं, इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैं तो कभी कभी झाड़ू लगा रही होती थी कभी बर्तन मांज रही होती थी, कभी प्रेस कर रही होती थी
0: जी,
1: वो छोड़ के मुझे लिखना पड़ता था
0: क्योंकि वो ख्याल दोबारा
1: नहीं आता,
0: नहीं आएगा ना, रुकेगा वो।
1: तो डांट भी पड़ती थी कि ये काम बीच में, झाड़ू अब बीच में पड़ी है, ये प्रेस कपड़ा जल गया है, तो वो छोड़ के फटाफट लिखने शुरू कर देती थी कि मैं फटाफट लिख लूं। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ।
0: क्या दिल में खुशी होती थी कि चलो अगर डांट भी पड़ गई बट जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया?
1: बिल्कुल, बहुत खुशी होती थी कि जो जज्बात दिल में आए वो कह डाले, कोई पढ़े कोई ना पढ़े, लेकिन वो मेरे पास कुछ तो महफूज है।
0: श्रोताओं को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के सफर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कभी भी हमारी जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जिंदगी में। और हमें आज सवि जी से बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, इनकी बातों से मुझे भी मार्गदर्शन हो रहा है और मुझे उम्मीद है जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी ये मार्गदर्शन दिख रहा होगा कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती है, पर जो मुश्किलों में अपनी जिंदगी की राह बनाते हैं वो शायद जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं और जिंदगी में आगे ही बढ़ते रहते हैं। सवि जी से पूछते हैं हम शेर व शायरी की ओर, कब से आपने रुख किया और क्या कोई कविता या कोई शेर जो सबसे पहले आपके हिसाब से हो, क्या आप हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं?
1: जी, शायद मैं 15 या 16 बरस की होंगी, तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं कुछ लिख भी सकती हूँ
0: जी।
1: तो पहले आप जानते हैं, आप कैलेंडर हुआ करते थे घर
0: जी।
1: में, शिव पार्वती का कैलेंडर, आप ये समझ लीजिए, वाल्मीकि समझ लीजिए मुझे
0: जी।
1: वाल्मीकि की तरह मैं शिव पार्वती के कैलेंडर को बड़े ध्यान से देख रही थी
0: जी।
1: पार्वती शिव की पूजा कर रही थी और भगवान शिव की जो तस्वीर थी वो बहुत प्यार से पार्वती को देख रहे थे
0: ठीक।
1: और पार्वती कोई शायद ये ऐसा कैलेंडर में था कि वो नहीं जानती थी कि शिव मुझे देख रहे हैं, वो मगन होके उनकी आराधना कर रही है
0: जी।
1: तो मैं बड़े ध्यान से देखती देखती देखती देखती, तो मुझे ख्याल सा आया, वो कुछ इस तरह था कि ना डालो हम पर तुम ऐसी नजर, ना डालो हम पर तुम ऐसी नजर, लगते हो कुछ परेशान, हम नहीं है बेखबर। लेकिन ये मेरा अपना विचार था
0: उस समय, जो ख्याल मन में आया हुआ आपने
1: ये मेरी पहली दो लाइनें हैं।
0: ओके,
1: एकदम शुरुआती दौर की पहली दो लाइनें, अब पता नहीं अच्छी थी कि बुरी थी, कह डाली लिख डाली जो अभी तक मुझे याद है।
0: याद है। आपका उपनाम सवि है, इसका मायने क्या है और कब से आपने इस उपनाम को लिखना अपने नाम के साथ शुरू किया?
1: जी, वैसे देखिए सवि का तो अपना कुछ मतलब कुछ ऐसा नहीं है, हाँ सवीना, सवीना जिसको आप कह सकते हैं कि वीणा
0: जी,
1: वीणा जो सरस्वती माँ के पास होती हैं
0: जी,
1: वीणा और सवीना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती के नाम से जुड़ा हुआ मेरा नाम है सवीना, तो माँ सरस्वती, सरस्वती भी कह सकते हैं आप इसको,
0: यानी कि आपको सवि के नाम से भी अब जाना जाता है।
1: जी जी जी, वो मैंने खुद ही अपने नाम को शॉर्ट कर लिया कुछ उपनाम सूझा नहीं तो अपने ही नाम को शॉर्ट कर लिया।
0: सवीना जी, क्या संगीत की, और जैसे आपने अभी बात की कि आपके घर में ही संगीत का माहौल रहा है और संगीत की तरफ आपकी कितनी रुचि है, हम चाहते हैं कि कोई अगर आपका मनपसंद गीत या गजल हो जो हम आपको भी और अपने श्रोताओं को भी सुनाएं।
1: जी, संगीत का मैं आपको बताऊं, संगीत मेरे लिए एक दवा की तरह काम करता है
0: जी,
1: खासकर पुराने गीत या गजलें, गुलाम अली जी
0: जी
1: उनकी गजलें मैं बहुत सुना करती थी, उस वक्त भी बहुत सुना करती थी और आज भी सुनती हूँ
0: जी,
1: वो मेरे लिए एक ऐसी दवा का काम करती, जितनी मर्जी टेंशन में हूँ मुझे एकदम रिलैक्स हो जाता है गजलें सुनकर, पुराने गीत सुनकर। एक गुलाम अली जी की एक अवारगी फिल्म का गीत है या गजल है ऐसा कह सकते हैं, चमकते चांद को टूटा हुआ सितारा बना डाला, वो मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे लिए लिखा हो।
0: तो अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप श्रोताओं के लिए इसको गुनगुना सकते हैं,
1: चलिए कोशिश करते हैं। चमक

0: सविना जी, आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक है मोती पलकों के, इसके बारे में बताएं, श्रोता भी जानना चाहेंगे।
1: काफी समय से लिखते लिखते डायरी की शक्ल तो बन ही गई थी
0: जी,
1: काफी समय से डायरी भी सिर्फ पड़ी हुई थी। आपको मैं बता दूं कि शादी के 20 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, इतना बच्चों में परिवार में इतना व्यस्त हो गई थी मैं। उस दौरान मैं ये सोचा करती थी कि ये मैंने ही लिखा है, बिल्कुल जैसे मैं भूल ही गई थी कि मैं लिखा भी करती थी कभी। शादी करके मैं जैसे जम्मू में गई, 8-9 साल वहां रहे, मिलिटेंसी के कारण हमें यहाँ वापिस आना पड़ा। तो वो लिखा हुआ था, तो जब जो जानने वाले थे मेरे घर में, रिश्तेदार थे, कुछ दोस्त थे, तो वो धीरे धीरे करके उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम लिखा करती थी, कहा है। मैंने कहा हाँ लिखा करती थी, पढ़ा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने बोला कि अपनी डायरी मुझे दे दो पढ़ने के लिए
0: जी।
1: कुछ झिझक भी हुई कि कुछ तो है नहीं, हाँ। उसमें बचपने का है, वो बचकाना चीजें हैं। खैर कोई बात नहीं, मैंने उनको वो डायरी निकाल के दे दी। कुछ बुरी सी अवस्था में भी थी, काफी सालों के से पड़ी हुई थी अलमारी में। तो वो जब डायरी निकाल के मैंने दे दी, वो चले गए, वो लखनऊ में रहते हैं। 1-2 महीने के बाद जब डायरी उन्होंने मुझे लौटाई, तो ये पुस्तक के साथ लौटाई।
0: यानी उन्होंने उस डायरी को पढ़ा,
1: हाँ जी,
0: और उसके बाद उसको एक पुस्तक का रूप दिया।
1: हाँ जी, हालांकि ये पुस्तक मैंने आज तक सेल नहीं की, किसी को तोहफे में दे दी, किसी को अपनी निशानी की तरह दे दी, सेल नहीं की मैंने। बहुत मेरे लिए बहुत गौरव की बात है ये कि उन्होंने, मैंने उनको एक डायरी दी थी फटी पुरानी सी, उन्होंने मुझे ये पुस्तक के रूप में उसको लौटाई। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके जरिए करना चाहूंगी, जो उन्होंने इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बगैर उठाया
0: और आपके लिए हाँ एक जिंदगी भर का एक ऐसा तोहफा दे दिया।
1: तोहफा जी, बिल्कुल,
0: जो आप हमेशा याद करती,
1: बिल्कुल याद रखूंगी मैं इसको, मुझे ये शायद जान से भी ज्यादा प्यारी है।
0: एक कविता हो जाए इसमें से जो आपको सबसे पसंद है, और इस पुस्तक का नाम रखा गया है मोती पलकों के, तो सवि जी एक कविता हो जाए
1: जी। मैं आपको एक गजल सुनाना चाहूंगी
0: जी,
1: कि उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू न ले इम्तहां इस कदर जिंदगी। उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू न ले इम्तहां इस कदर जिंदगी, अब तो है हर दवा बेअसर जिंदगी, अब तो है हर दवा बेअसर जिंदगी, जहर अब कर चुका है असर जिंदगी। हसरतें पूरी हो जाती शायद सभी, हसरतें पूरी हो जाती शायद सभी, और थोड़ी सी होती अगर जिंदगी।
0: क्या बात है, क्या बात।
1: अब न सामान जोड़ो जमाने का तुम, अब न सामान जोड़ो जमाने का तुम, है किसी की नहीं ये अमर जिंदगी। जैसे हमने गुजारी है अब तक यहाँ, जैसे हमने गुजारी है अब तक यहाँ, कोई करता नहीं है बसर जिंदगी।
0: जी।
1: मीठे फल हमको जिसने हमेशा दिए, हमारे माता पिता
0: जी,
1: उनके लिए है ये शेर। मीठे फल हमको जिसने हमेशा दिए, कट गया वो हमारा शजर जिंदगी।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। हम तो जीने की कोशिश ही करते रहे, हम तो जीने की कोशिश ही करते रहे, खत्म लेकिन हुआ अब सफर जिंदगी। तेरी यादें बसी हर गली हर डगर, तेरी यादें बसी हर गली हर डगर, छोड़ आऊं बता किस नगर जिंदगी, छोड़ आऊं बता किस नगर जिंदगी, उनका दीदार कर लेती शायद सवी, उनका दीदार कर लेती शायद सवी, रोक लेती कदम तू अगर जिंदगी।
0: बहुत खूब।
1: उम्र खुशियों की है मुख्तसर जिंदगी, तू ना ले इम्तहां इस कदर जिंदगी।
0: बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: सवि जी। ये गजल सुन के मुझे एक ख्याल आ रहा है, आपने कहा कि एक दौर ऐसा आया जब आपके परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा थी, आपने माँ का रोल निभाया, तो लिखने का आपने छोड़ ही दिया था, मतलब आप लिख नहीं रही थी।
1: जी जी जी।
0: तो यानी कि जिम्मेदारियों के साथ साथ आपने कभी भी समझौता नहीं किया है।
1: हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही।
0: पर ये मानता हूँ कि मैं, जो हमारे अंदर एक कला होती है या जो हमारा एक पैशन होता है, वो कभी भी एक व्यक्ति के अंदर मरता नहीं है, वो जीवित रहता है। तो जब आपने अपने आप को थोड़ा सा फ्री पाया,
1: हाँ जी,
0: बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां थोड़ी सी कम हो गई, उसके बाद फिर आपने लिखना शुरू कर दिया।
1: जी ये भी आप ये कहिए कि मेरे जो मुझे जानते थे कि मैं लिखा करती थी, उन्होंने ही मुझे जगाया।
0: क्या आप जो कर रहे थे
1: जो ये मतलब उन किताब जैसे छपी तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि तू दोबारा लिख। मैंने शायद सोचा कि मैं नहीं लिख पाऊंगी
0: जी जी,
1: लेकिन मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। फिर मैं अपने आदरणीय विनय सागर जायसवाल जी का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मिले, और वो मुझे जब मैं ये व्हाट्सएप पे ये भेजा करती थी तो वो बहुत तारीफ किया करते थे कि बहर के बहुत करीब हो तुम, थोड़ा सा और बहर में आ जाओ। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि बहर होता क्या है, वन टू देखा करती थी मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी
0: जी।
1: फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे समझाना शुरू किया, और मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा यहाँ करना चाहूंगी कि वो मेरे दूसरे गुरु हैं,
0: यानी कि वो आपके मार्गदर्शक रहे हैं इस सफर में।
1: हाँ जी।
0: कोई और कविता आप सुनाना चाहेंगे?
1: ये देखिए मैं गा तो नहीं सकती वैसे, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी।
0: हाँ,
1: यहाँ पर
0: तरन्नुम में आप गाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कला हमारे पास नहीं है। हमें बहुत खुशी होती है कि अगर हम तरन्नुम में सुने तो उसका आनंद और बढ़ जाता है।
1: जी। वफा किसी से निभा के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, हथेलियां भी लगे महकने, हथेलियां भी लगे महकने, किसी का दामन सजा के देखो, ये दिल तुम्हारा भी खिल उठेगा, ये दिल तुम्हारा भी खिल उठेगा, जरा किसी को हंसा के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, है कितनी बेकल हमारी आंखें, है कितनी बेकल हमारी आंखें, कभी तो पलकें उठा के देखो, सुना है सुनी है तेरी महफिल, सुना है सुनी है तेरी महफिल, तो आज मुझको बुला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, सुकून की हद जो देखनी हो, सुकून की हद जो देखनी हो, तो दर्द दिल में छुपा के देखो, हजारों हाथों की गूंज सुनना, हजारों हाथों की गूंज सुनना, गजल हमें तुम सुना के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, वो वक्त कैसे गुजारा हमने, वो वक्त कैसे गुजारा हमने, हर एक लम्हा भुला के देखो, तड़पते रहते हो जिनको पढ़ के, तड़पते रहते हो जिनको पढ़ के, वो सारे खत तुम जला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो, करार मिलता कहीं ना हमको, करार मिलता कहीं ना हमको, सभी को थोड़ी पिला के देखो, वफा किसी से निभा के देखो, दिलों से नफरत मिटा के देखो।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: एक कवि का जो मन है वो कहाँ से कहाँ जाता है।
1: हाँ जी।
0: और एक जगह बैठ के वो उस अपने मुरीद को या सुनने वालों को या चाहने वालों को पूरे विश्व का भ्रमण करा देता है। और आपने इसमें एक बहुत ही अच्छी एक बात कही है कि नफरतों को मिटाना चाहिए, और अगर हमें एक अच्छा संसार और अच्छा देश, अच्छा समाज चाहिए, तो उनमें जो आपकी ये बात है और वो हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है, हम भी यही इल्तिजा करते हैं कि जो नफरतें हैं वो कम हो जानी चाहिए, वो मिट जानी चाहिए। गीत या गजलें आप कौन सी ज्यादा पसंद करते हैं? क्या किसी खास कलाकार को आप पसंद करते हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं या सुनते आ रही हैं?
1: जी, मुझे पुराने गीत ही पसंद हैं। गजलों के जो गायक हैं वो मुझे गुलाम अली ही पसंद है। बाकी जो फिल्मी गाने की जो मैं बात करूं तो लता मंगेशकर, आशा भोसले, मैं किसी एक को ऐसा नहीं कि मैं पसंद करती, जो पुराने जितने भी हैं, किशोर कुमार साहब, रफी साहब और पंकज मलिक जी, हेमंत, गीता दत्त, हाँ जी, मुझे पुराने गीत बहुत ज्यादा पसंद है।
0: अभी हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि आपका जन्म चंडीगढ़ में हुआ है, क्या चंडीगढ़ की कोई बचपन की कोई झलक आप हमारी श्रोताओं को देना चाहते हैं, ताकि हम बातों से ही उनको चंडीगढ़ में आपके उस दौर की ओर लेके जा सकें?
1: जी, चंडीगढ़ में बचपन बहुत ही सुहाना और बहुत ही प्यारा गुजरा। जिस तरह से आजकल बहुत ज्यादा भीड़ और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया, ऐसा उस वक्त बिल्कुल नहीं था।
0: जी,
1: खुले खुले मैदान, बहुत ही खुले खुले मैदान, जिसमें हम सारा सारा दिन दौड़ा भागा करते थे, झूले लगे हुए थे, झूले लिया करते थे। और आजकल तो हम अपने बच्चों को शायद अकेला झील में जाने ही नहीं देंगे घूमने के लिए, तो हम सारा सारा दिन वहां पैर लटका के बैठे रहा करते थे पानी में।
0: अच्छा,
1: इतना आनंदित था हमारा बचपन, इतना आनंदमय था कि मैं आज बच्चों को जब देखती हूँ तो मुझे बड़ा ही रहम आता है उनके ऊपर कि बड़ी बंदिशों में आजकल के बच्चे। इसी वजह से शायद पढ़ाई वढ़ाई कुछ कम ही रह गई हमारी, खेलकूद में ज्यादा समय बीता करता था। कभी कभी तो हम सारा सारा दिन घर ही नहीं आया करते थे कि घर जाएंगे तो खाना खाने के लिए रोक लेंगे, खाना भी नहीं खाना है। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही खूबसूरत है चंडीगढ़, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इतने फूल, झील का किनारा, बहुत सुंदर माहौल में मैं रही हूँ और वहीं बैठ के गजलें लिखा करती थी।
0: क्या कविता लिखने में भी वहां पर कुछ ऐसा माहौल बनता था कि कुछ ख्याल आते थे जो आप?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। फूलों की क्यारियां वहां इतनी हुआ करती थी कि मैं बस दरी बिछा के लेट जाया करती थी और खूब लिखा करती थी। अकेली जब होती थी, मुझे मदद की है वहां का माहौल लिखने के लिए।
0: यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं को सुनाएं, तो क्या कोई फिल्मी गाना भी आपको पसंद है?
1: जी, मैं चंडीगढ़ की जो भूली बिसरी यादें हैं,
0: जी जी,
1: उन्हीं के ऊपर मुझे गीत याद आता है कि वो भूली दास्तां वो फिर याद आ गई।
0: तो बस आप गुनगुनाइए और हम फिर उस गाने की ओर चलते हैं।
1: जी, बहुत पुराना गाना है, मैं कोशिश करती हूँ।
0: जी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हमसफर जिंदगी का। आज के काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कवित्री सवीना वर्मा सवी जी। ये कार्यक्रम का अंतिम भाग है, चर्चा हमारी सवी जी के साथ जारी है। सवी जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपके लिखे शब्द आपके दिल को छूते हैं? अगर हाँ, तो मुझे विश्वास है कि आपके सुनने वाले और चाहने वालों को भी ऐसे ही आभास होता होगा।
1: जो ये लिखा हुआ होता है, मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसा होता है लिखने वाले के लिए जैसे हमारे बच्चे हों
0: जी।
1: आप ये नहीं कह सकते मुझे ये बच्चा पसंद है, ये बच्चा नहीं पसंद है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ।
0: जी जी।
1: मेरी अपनी मासी का किस्सा है ये, शायद वो सुने तो। उनके उस जमाने में 9 बेटियां थी, पटियाला की बात है ये। गेस्ट हाउस था उनके पास, तो वहां पर अंग्रेज आके रुके, बाहर से उस वक्त बहुत घूमने फिरने आया करते थे, तो रुके। तो उन्होंने बोला, आपके पास 9 बेटियां हैं, हम पूरे डॉक्यूमेंट बना के पूरी अपनी जजात इसके नाम लिख के एक बेटी हमें दे दो।
0: अच्छा।
1: जितनी भी हमारे पास जजात है, जितनी भी धन दौलत है, हम इसके नाम लिखेंगे, फिर हमें ये गोद दे दो। उन्होंने वो बेटी गोद नहीं दी उनको, हालांकि खुद वो इतने रिच नहीं थे, इतने अमीर नहीं थे, साधारण फैमिली थी। लेकिन वो तो वही मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे ही लिखने वालों के लिए अपनी गजलें, अपनी कविताएं ऐसी होती, सभी को अपनी गजलें या मुझे प्यारी होती हैं। और हाँ, बहुत दिल के करीब, जब मैं बहुत ही मतलब इमोशनल होती हूँ, या जब मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखती हूँ, कि जब बहुत ज्यादा मूड होता है ना लिखने का, कि जबरदस्ती नहीं लिखती हूँ, कि अपने आप से जबरदस्ती लिखवा डालूं,
0: कुछ ख्याल आ गया,
1: कुछ ख्याल तो... जब अच्छे आते हैं मैं तभी लिखती हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं लिखती मैं। तो इसी के साथ एक गजल आपको सुना देती हूँ, कि सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो आप खुद बना सकते हैं, और जो रिश्ते होते हैं वो आपको भगवान की दया से ही मिलते हैं, लेकिन दोस्त आप खुद चुन सकते। सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने। सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने। उफ ये पैरा हन तुम्हारा और ये कातिल अदा, उफ ये पैरा हन तुम्हारा और ये कातिल अदा, ताज भी फीका लगे इस सादगी के सामने।
0: क्या बात है,
1: शुक्रिया। बेखुदी है या नशा है या के दीवाने हैं हम,
0: बेखुदी है
1: या नशा है या के दीवाने हैं हम, कुछ नजर आता नहीं इस रोशनी के सामने। जाम खाली हो गए लेकिन अभी तक होश है, जाम खाली हो गए लेकिन अभी तक होश है, वो नशा कुछ और था इस मैकशी के सामने।
0: क्या बात,
1: वो नशा कुछ और था इस मैकशी के सामने। होश तो जाकर न आया अब तलक यारो मेरा, होश तो जाकर ना आया अब तलक यारो मेरा, आज हम मजबूर हैं

0: बस बेसुधी के सामने। गौर फरमाइएगा, मन मयूरा नाच उठता देख तुझको सांवरे, मन मयूरा नाच उठता देख तुझको सांवरे, तू भी आके नाच ले इस बांवरी के सामने।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: बाखुदा हमने न समझा उनको बेगाना सवी, बाखुदा हमने न समझा उनको बेगाना सवी, हम निशाने पर रहे क्यों दिल लगी के सामने, हम निशाने पर रहे क्यों दिल लगी के सामने, सारे रिश्ते झूठ हैं इस दोस्ती के सामने, फूल लाखों खिल उठे तेरी हंसी के सामने।
1: बहुत खूब, आपने सवि जी मेरे सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया है, और जो मेरा सवाल था उस सवाल के बदले आपने जो हमें ये कविता सुनाई, ये सटीक जवाब है। और मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ, जो आपके चाहने वाले हैं, आपकी कविता के चाहने वाले हैं, जो हमारी श्रोता हैं, ये कविता भी उनके दिल तक पहुंची होगी। अगर जिंदगी में हर कोई साथ छोड़ दे, पर दोस्त कभी हाथ छोड़ नहीं देता, ना वो साथ छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं सवि जी, जो आपने गजलें आज तक लिखी है, क्या आपकी गजल किसी गायक ने गाई है या आने वाले दिनों में ऐसी कोई योजना है?
0: ये योजना तो कोई नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पे बहुत लोग गाते रहते हैं, और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा है कि आपकी गजल जब हम गाते हैं तो हमें फरमाइश आती है, हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं कि सवीना जी की गजल गाइए।
1: बहुत अच्छी बात है ये
0: जी, ये मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ।
1: जी जी,
0: मेरी इच्छा है कि काश गुलाम अली जी मेरी एक गजल गा दे, लेकिन शायद ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाएगा, शायद जिंदगी में कभी उन तक पहुंचे।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, अगर आप प्रयत्न करें तो कई बार ऐसी चीजें भी संभव होती है जो हमने सोचा होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आप उनके साथ किसी न किसी तरीके से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, मानते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा है, शायद एक साधारण मैसेज का या किसी कारण वर्ष वो जवाब ना दे पाए, पर मैं मानता हूँ हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए, एक दिन वो जरूर आएगा। गुलाम अली साहब नहीं तो हमारे देश में बहुत अच्छे गजल गायक है, वो आपकी गजल को गाएंगे और आपके शब्दों को वो अपनी आवाज दे सके, उसके लिए हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप अपने गुरुजन को कैसे याद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कार्यक्रम के माध्यम से अपने गुरुजन को?
0: जी, पहले गुरु तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, मेरे भाई साहब ही थे
1: जी,
0: और दूसरे गुरु मैंने विनय सागर जायसवाल जी का नाम लिया। मैं उन दोनों को रोज सुबह शाम जरूर एक बारी प्रणाम करती हूँ, शायद उन्होंने मैंने कभी कहा नहीं उनको, लेकिन मैं इस माध्यम से आपके माध्यम से उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे, विनय सागर जी ने बहुत कुछ सिखाया, भाव अपने होते हैं लेकिन उनको कोई चमका दे पॉलिश कर दे तो वो कुछ और ही बन जाते हैं।
1: और एक रास्ता बता दें कि हाँ, किस तरीके से हम अपने उस थॉट को, उस सोच को कैसे हम पेश करें। अंत में आपसे चाहता हूँ कि हमारे देश के जो नए कवि और कवित्रियां हैं, आप उनको अपने अनुभव से क्या संदेश देना चाहती हैं, ताकि वो भी लिखना जारी रखें, एक वो मुकाम हासिल करें जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं।
0: जी, मैं अपने अनुभव से तो मैं सबसे पहले तो माता पिता को यही संदेश देना चाहूंगी कि बच्चों में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गुण जरूर होता है, हर इंसान में होता है, तो कोई भी गुण ऐसा देखें तो उसे प्रोत्साहित करें, उसे रोके नहीं, साथ खड़े हों उसका, जो शायद हमें नहीं मिला। लिखने लिखाने का, सुनने सुनाने का हमारा शायद ये सफर बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप बच्चे जो भी उनके अंदर कोई भी ऐसा कुछ हुनर हो तो उसे छुपाएं नहीं, मेरी तरह खुल के सामने आए, एक नहीं तो कोई ना पहला कदम उठाएं तो कोई ना कोई दूसरा कदम उठाने के लिए आपका हाथ जरूर थामेगा।
1: सवि जी, आपकी बात सही है, बट तब से और अब के समय में बहुत बदलाव आ चुका है। आज पेरेंट्स इस सोच से होते हैं कि अगर बच्चे में उनका कोई हुनर है, उनमें कोई काबिलियत है, तो वो उसका साथ देते हैं। तो क्या कोई और आप हमें कविता सुनाना चाहेंगे जाते जाते?
0: जी, एक हल्की फुल्की सी गजल मैं सुना सकती हूँ आपको। जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए।
1: वाह।
0: जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए, इश्क का तब बुखार होगा कम, इश्क का तब बुखार होगा कम, उनका लहजा कुनीन हो जाए, इश्क का तब बुखार होगा कम, उनका लहजा कुनीन हो जाए। अब न खींचो ये धागा रिश्ते का, अब न खींचो ये धागा रिश्ते का, फिर ना नाता महीन हो जाए।
1: क्या बात,
0: शुक्रिया। हम लुटा देंगे उस पे जानो दिल, हम लुटा देंगे उस पे जानो दिल, वो भी तो जानशी हो जाए। वो जहां पांव रखते हैं अपने, वो जहां पांव रखते हैं अपने, फूल सी वो जमीन हो जाए। वो जहां पांव रखते हैं अपने, फूल सी वो जमीन हो जाए। आज छूने से जिसको डरते हो, आज छूने से जिसको डरते हो, आदमी वो कुलीन हो जाए। और गौरे तलब शेर देखिएगा कि नीम सी दोस्ती जरूरी है,
1: नीम सी दोस्ती जरूरी है,
0: कड़वी नीम सी दोस्ती जरूरी है, क्या हो अगर सब शिरीन हो जाए।
1: क्या बात,
0: नीम सी दोस्ती जरूरी है, क्या हो अगर सब शिरीन हो जाए। मेरी कोशिश का फल मिले मुझको, मेरी कोशिश का फल मिले मुझको, अब सभी नामचीन हो जाए।
1: क्या बात,
0: अब सभी नामचीन हो जाए, जिंदगी कुछ हसीन हो जाए, उनको हम पर यकीन हो जाए।
1: सभी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ आवर हुई, आप यहाँ आए, आपने अपने कविताओं के जरिए हमारे श्रोताओं को अपने जो शब्द है, लिखे शब्द है, वो आपने पहुंचाए। और आज जैसे आपने आखिरी जो कविता पढ़ी है, और आप नामचीन तो पहले ही हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप और मशहूर हो जाएं, और बड़े स्तर पर आप मुशायरों में जाएं, आप अपना कविता पाठ करें वहां पर। जहां तक मेरा ख्याल है, हमारे पास जो कला होती है उसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है, हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। और इन शब्दों के साथ ही मैं आपका एक बार फिर अपनी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं इजाजत आप सभी श्रोताओं से, और इस प्रोग्राम का समापन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
0: मैं आपका और श्रोताओं का और आप भारत जी आपका, रेडियो का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे, छोटे से कलाकार को आपने मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त किया, और मैं चाहूंगी कि मैं फिर से आऊं।
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया, नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: You are listening FM 90.0 megahertz radio with Asta, hum safar zindagi ka. Ambala Kent's first community radio, licensed by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: यो FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विदस्ता, सुनना भूलना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो हितसत्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो हितसत्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो हितसत्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

है आशिक इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: सही है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि हक मतलब देते नहीं सीना जाता है, नोटिफिकेशन करके हक तो दे दिया है ना, सारे सेट कर दिया, लेकिन जो औरतें आगे आई है ना वो अपने बल पे आई है, मतलब उनके भी वही कल्चर है, वही सोसाइटी है, जो लोग आगे आके काम करने लगी हैं वो अपने दम पे आई हैं। अदरवाइज
2: बिल्कुल आपकी बात सही है, पर इसमें भी मैं एक बात ये जरूर कहूंगी, वो अपने बल पर आई है। अगर हम आज इस पैनल पे इस तरह की या उनकी चर्चाएं नहीं करेंगे तो उनके हौसले भी बुलंद नहीं हो सकते, क्योंकि वो महिलाएं हैं जो चार दीवारी के अंदर ही हैं, वो महिलाएं हैं जिनको ये कहा कि तू 10वीं तक ही पढ़ेगी उसके बाद नहीं, तू 12वीं ही करेगी उसके बाद नहीं, लेकिन ललित जी ने तो कहा ना कॉलेज में तो भेजेंगे, दुनिया को कहने दो जो कहते हैं। फिर दूसरे सर ने कह दिया ना भाई मास्टर तो कराने ही चाहिए, अरे भाई अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहिए। फिर मैं ये कह रही हूँ ना लड़कियों का बाहर जाना ठीक नहीं है भाई, ये सरपंची करेंगी, ये सत्ता में आएंगी तो कैसे बात बनेगी। तो हर पहलू है, वो ताकत देने वाले भी हम ही हैं और उनकी टांगे खींचने वाले भी हम हैं, तो हमें बस वो लेंस लगाने पड़ेंगे कि कहाँ पर हमें किस लेंस का इस्तेमाल करना है। तो इसमें केवल महिला या पुरुष वाली बात नहीं है, यहाँ पर हमें सही और गलत की बात करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण आएगा।
3: आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मौका हर किसी को मिलना चाहिए, और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं भारत जी, और मौका भारत जी को भी मिलना चाहिए। भारत जी स्वागत है आपका।
4: जी सभी का मेरी ओर से सभी को प्यार भरा नमस्कार, भारत सोपोरी बोल रहा हूँ, और मेरी आवाज आ रही है?
3: जी बिल्कुल
5: दमा
4: रही है सर। जी जी जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आज देरी से जुड़ा हूं, क्योंकि कुछ व्यस्तता थी और जैसे ही स्टूडियो आया तो आप लोगों से जुड़ा। पैनल पर सभी का स्वागत, ललित जी आपका और मैडम सुनीता जी हैं आपका भी स्वागत है, और मैं अंबाला से भारत सोपोरी और FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आपकी आवाज अब लाइव है। जो आप बात बता रहे थे, मैं कुछ समय लगेगा मुझे विषय क्या था, और मैं सुनूंगा आप सभी को, फिर उसके बाद में अपनी आवाज को आहिस्ता आहिस्ता खोल दूंगा। प्रीतम जी आपका भी स्वागत, नमस्कार सभी को।
5: नमस्कार भारती। बार जी सच बताना कभी सो तो नहीं गए थे?
4: नहीं नहीं नहीं,
5: गर्मी में
4: नहीं नहीं, वो तो चेहरे से दिखता है अगर सो गए तो। जब मैं सो जाता हूँ, हाँ मैं किसी काम में बिजी था, थोड़ा देरी उसमें लगी, तो इसलिए हम आगे आगे बढ़ते
6: हैं।
4: राम राम राम राम। सर आज देर क्यों, लेट क्यों आए आज?
6: मैं बस आज थोड़ा सा व्यस्त था, मेरे गांव से हमारे कुछ साथी गांव के, और यहाँ नीलोखेड़ी के अगल बगल के पधाणा के गोंदर के मित्र जो है ना वो पहुंचे हुए थे मेरे दफ्तर में मिलने, और वो एक बहुत हमारे भारी भरकम नेता को साथ लेकर आए थे, हमारे शिवनाथ कपूर जी, यहाँ के नीलोखेड़ी की जो मार्केट कमेटी है उसके प्रधान हैं, पुराने पत्रकार साथी हमारे। तो जब इतने बड़े बड़े लोग आ जाएं, इतने ठाडे ठाडे लोग, तो फिर मुझे आपसे छुट्टी लेनी पड़ती है।
4: जी धन्यवाद। मैं भी एक राज की बात बता दूं सर, मैं आपसे सिर्फ एक मिनट पहले जुड़ा हूं।
6: ये तो गड़बड़ की आपने, मैं सोच रहा था आपने कार्यक्रम आपको तो बहुत लगता होगा।
4: जी जी चलिए आगे चलते हैं, और कुछ खास बात हो रही थी, मैडम कुछ बोल रही थी, तो मैं चाहूंगा कि एक बार और वो विस्तार से बात।
6: सुनीता जी जारी रखो आप बातचीत।
4: जी
6: जी
2: सर नमस्कार।
3: चर्चा हो रही थी महिलाओं से रिलेटेड, जो कि हम कल कर भी रहे थे
4: जी,
3: और महिलाओं का सशक्तिकरण उस पर चर्चा हो रही थी। पर भारत जी उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आज के बारे में, आज की तिथि जब आप हर बार बताते हैं, आज क्या है, आज का खास दिन क्या है?
4: जी जी आपने सही बताया, मैं सभी श्रोताओं को ये जरूर कहना चाहूंगा, आप हमारे इस कार्यक्रम राम राम हरियाणा में जरूर जुड़िए, और आप हमें कॉल कर सकते हैं 8816-904-904। आज है 25 जून 2026, और अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको हम निर्जला एकादशी भी बोलते हैं, और आज ये हिंदी तिथि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आज है 2083 विक्रम संवत। हिंदी तिथि हम सबको पता होनी चाहिए, हमें इसके बारे में जानना चाहिए हमारा ईयर कौन सा है, और विक्रम संवत हिंदू जो धर्म है उसमें एक बहुत बड़ी जगह रखता है। और मैं एक बार फिर माइक आपकी ओर दे रहा हूँ, और जो चर्चा चल रही थी बहुत ही सार्थक चल रही थी, और मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को हमेशा मौका जरूर मिलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, अगर उनको कभी जगह नहीं मिलती है तो उनको अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए और सामने आना चाहिए। कल भी मैं जो हमने कल जो दिवस मनाया उसमें भी ये कहा गया कि जब महिलाओं को मौका दिया गया उन्होंने कूटनीतिक मसलों में भी अपनी धाक जमाई। तो हमें अच्छा लगता है कि अगर हम, जैसे मैं इस समय स्टूडियो में हूँ, मैं पुरुष इस समय अकेला हूँ, दो महिलाएं हमारे इस समय स्टूडियो में है, और जब हम उनसे बात करते हैं तो ऊर्जा भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, और कोशिश है कि उनको अगर मौका दिया जाए तो ही वो आगे आने वाले दिनों में कुछ सार्थक और अच्छा कर पाएंगे। तो कृपया आप आगे कंटिन्यू करें प्लीज।
5: हम भी मौका सुनीता जी को दे रहे हैं, माइक सुनीता जी की ओर कर रहे हैं, और सुनीता जी आज अपने दिल के सारे विचार बता दें कि ये कैसे
4: में कहा महिलाओं को कहां तक जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि एक मिनट मैडम, मैं कहता हूं कि हरियाणा की छोरी जो है वो धाकड़ छोरी होती है, तो आप जो जो धाकड़ ख्याल है आप कह दीजिए उनको आज।
2: नहीं सर, बिल्कुल आपने सही करी कि हरियाणा की छोरी हैं जो ये कहते भी हैं कि नहीं डरी हम, डटी रही हम जब गोली बंदूक चली। तो ना ही वो डरती है ना ही वो डटती हैं, और जब जब उनको मौके मिलते हैं तो वो आसमान को छूती हैं। बस ये है कि उनको मौके दिए जाएं, अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर छीनने की ताकत भी वो रखती हैं। तो मैं ललित जी को और अमन जी को यही हम चर्चाएं कर रहे थे कि स्पेस देना पड़ेगा हमें उनको भी, केवल यहाँ तक नहीं कि महिला सशक्तिकरण है या कागज में है वो, है ना, कितना परसेंट उनको मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। गांव के बिचारी जो हमारी ताती दादी हैं चाची हैं उनको तो पता ही नहीं परसेंटेज होता क्या है, वो क्यों देखेंगे। अच्छा गीता में कितनी कारी हैं, 10 आई हैं, 20 आई हैं, है ना, 5 आई हैं। तो जो शिक्षा एक जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उनका, तो शिक्षा और बराबरी वो दोनों ही देने के लिए दोनों ही जेंडर को, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये मेरा मानना है कि हम दोनों को ही स्पेस देना पड़ेगा। अगर मैं निकल गई हूं तो मुझे लगता है कि मैं उन 100 महिलाओं को फिर से निकाल के लेके आऊं जहां तक वो लोग पहुंचे नहीं पाए हैं जो बात करते हैं।
4: सुनीता जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपकी आवाज इस समय अम्बाला के रेडियो वितस्ता से लाइव जा रही है हमारे श्रोताओं पे, जिन पे महिलाएं भी सुन रहे हैं पुरुष भी सुन रहे हैं, आप उन महिलाओं को किस तरीके से आप एनर्जाइज करेंगे, ऊर्जा उनको देंगे, और आप अपने बारे में भी उनको बताइए कि आपने आज तक क्या क्या किया, कहां मुश्किलें आई, और ताकि वो भी उन मुश्किलों को पार करके आगे बढ़े।
2: बिल्कुल सर, मैं अपने से ही शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो सांझला ये मंच है और अपने दुख सुख बांट लिए जाएं। कई बार ये लगता है कि नहीं ये महिला बहुत आगे बढ़ी हुई है, ये तो पता नहीं कैसे पहुंच गई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। संघर्ष सबके जीवन में आते हैं, तो हमारी जितनी भी नौजवान लड़कियां हैं, टीनेजर लड़कियां हैं, या वो महिलाएं हैं जो एक उम्र का पड़ाव पार कर चुकी हैं या जो करने जा रही हैं, तो ये उनके सबके लिए है, क्योंकि ये मेरी अपनी कहानी ना होकर उन सब महिलाओं की लड़कियों की कहानी होगी। जब मैं आठवीं कक्षा तक पहुंची तब मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे कि अच्छा लड़की बड़ी हो रही है। वो बड़ा होना उन्होंने मेरा कहां से देखा कि अच्छा मेरा शरीर में उभार आ रहा है, मैं बड़ी हो रही हूं तो मैं शादी के लायक हो रही हूं। उन्होंने इस एंगल से किसी ने भी नहीं सोचा कि मेरे सपने जवान हो रहे थे साथ साथ में, मैं कुछ बनना चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन नहीं, सबके दिमागों में यही बात थी जो अक्सर रहती और आज भी है कि अच्छा 10वीं कर ली है अब 12वीं में हो जाएगी, अब तो शादी करनी पड़ेगी। किसी ने बैठकर ये चर्चाएं नहीं करी कि ये आगे मास्टर करना चाहती है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, ये लेखिका बनना चाहती है, ये गायिका बनना चाहती है, या प्रोफेसर, कुछ भी उसका जो सपना था। और मेरे पिताजी में कोई ऐब नहीं था, ना बीड़ी सिगरेट दारू कुछ नहीं पीते थे, और सबसे मतलब शोक बात यह कि वो अनपढ़ थे पर साक्षरता अभियान में पढ़े, और उन्होंने ये ठाना कि नहीं मैं अपनी बेटी को बहुत पढ़ाऊंगा जितना वो पढ़ेगी। अब बात आती है, मेरे माँ बाप तो मेरे साथ थे, पर चाचे ताऊ पड़ोस का जो इन्वायरमेंट था वो मेरे साथ नहीं था, वो मेरी फैमिली के साथ नहीं था। अब उन्होंने टांग खींचना शुरू कर दिया कि भाई दसवीं कर ली, आगे नहीं भेजना। अब मेरे को थोड़ी सी ऊर्जा मिली मेरे पिता से, तो वो ऊर्जा अगर हम कहें कि एक चिंगारी ने आग लगा दी, तो मेरे पिताजी ने ये कहा कि नहीं मैं इसको पढ़ाऊंगा, तो वो चिंगारी उन्होंने फेंक दी थी, वो मेरे अंदर आग लग चुकी थी। बस ये है कि शब्दों को हम कितनी ताकत के साथ और किस एहसास के साथ पकड़ते हैं। तो उस चिंगारी ने जो मेरे अंदर आग लगाई, मैं उन सभी लड़कियों को कहना चाहूंगी, उस दिन मैंने ठाना कि नहीं, मैं अपने गांव से जाकर, मैं महम कस्बे से हूं, अब तहसील बन गया है, कि मैं उससे बाहर जाकर रोहतक में पढ़ूंगी। जब मैं 12वीं कक्षा में हुई तो मैंने 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया, और कमाल की बात आप देखिए, एक जुनून ऐसा, मैथ मुझे नहीं आता और मैंने मैथ ही पढ़ाया। मतलब मैं खुद इतना हैरान थी कि मेरे को मैथ नहीं आ रहा और मैं मैथ पढ़ा रही हूँ और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेरी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना था। उसके बाद मैं कॉलेज आई, कॉलेज आने के बाद मैंने एक एक रुपए में सर्वे किया घर घर जाकर, कि ताकि मैं मेरे माँ बाप पर बोझ ना बनूं, वो मुझे बोझ ना समझे कि इसकी फीस भरनी पड़ती है। और जब बीपीएल सर्वे होते थे घरों के, मैं इसलिए ये पर्सनल शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां महिलाएं उनकी सबकी स्टोरी है कि यार फीस कैसे भरोगे। अगर मैं 100 घरों में जाती थी दिन भर इस दोपहरी में, तो 100 रुपए मुझे मिलते थे। और ये सब मेरा कम से कम 1.5 साल तक चला, और फिर मैंने अपना कॉलेज किया। कभी बीमार हुए, कभी कुछ हुए, फैमिली का इशू आ गया, फादर साहब को हार्ट अटैक आ गया, फिर शादी का दबाव भी आ गया। उसके बाद भी हिम्मत मैंने नहीं छोड़ी, और आज मैंने हिंदी से मास्टर कर रखा है, और पहली परफॉर्मेंस मैंने HIRD नीलोखेड़ी में थिएटर की दी। थिएटर मुझे बहुत पसंद है, जिसमें मैं जागरूकता अभियान करती थी कि महिलाएं खूब पढ़ें, लड़कियां खूब पढ़ें। और मैं रात्रि चौपाल करना मुझे बहुत पसंद था कि मैं गांव के बुजुर्गों से बात करूं, वहां के नौजवानों से बात करूं, और वो कब मिलेंगे, वो शाम को मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, वो दारू के ठेके पर मिलेंगे, वो गांव की चौपाल के बाहर मिलेंगे। तो मेरे अंदर डर नहीं था, और डरना भी नहीं चाहिए, और शराबियों से तो बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर कोई जान नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है, और वो उल्टा बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ बॉडी अनकॉन्सियस होती है, उनका शरीर काम करना छोड़ता, दिमाग वही है उनका। तो ये जो मजबूती मिली, ये मुझे कहाँ से मिली, मुझे मेरे परिवार से। मेरे चाचा बहुत शराब पीते थे, वहां से मैं इन चीजों को समझ पाई, और मैंने फिर वहां से शुरू किया। और मैं एक बार HIRD नीलोखेड़ी पंचायती राज पे नाटक मैंने तैयार करवाया था, उसकी परफॉर्मेंस चली थी पूरे हरियाणा के अंदर, और वहां से जो वहां के जो डायरेक्टर थे उस समय पूरण सिंह यादव, उन्होंने मुझे वहां से कैच किया था, और फिर मैंने अप्लाई किया। तो 9 साल मैंने पंचायती राज के साथ काम किया, और मैं यहाँ वो उस शिक्षा की बात कर रही हूँ कि कुछ तो कहते हैं कि कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ कड़े हुए थे, मैं उन समस्याओं से कड़ी हुई थी, उन समस्याओं का मैं सामना कर रही थी जो मेरे अंदर दिख रहा था। और वहां पहुंचकर फिर मैंने अलग अलग जगहों पर लड़कियों के साथ, मैंने हरियाणा को जानो, हरियाणा को समझो, एक ऐसा जत्था प्लान किया, और अपने दम पे प्लान किया, जहां उसके कोई पेपर वर्क नहीं है उसका, वो कोई न्यूज में नहीं आया, वो कुछ नहीं, हम 7-8 लड़कियां एक पेज पर इकट्ठी हुई, हमने कहा कि चलो जाते हैं कहीं कहीं, देखते हैं, गांव गांव में जाकर बात करते हैं। जब लड़कियों की जब समस्याएं सुनी, तो असल में सशक्तिकरण की तो उनकी वहीं से बातें शुरू हुई कि भाई दसवीं के बाद करें तो क्या करें, 12वीं के बाद कहाँ जाएं, घर के तो खड़े हैं कि इस खुट्टे से पकड़ के अब उस पे बांधनी है। तो ये जो मसला था, उनके सपनों की बात निकल के आई कि असल में बात करने की जो जरूरत है वो बेटियों के सपनों पे बात करने की जरूरत है। फिर उसके साथ साथ मैंने जेंडर को समझना शुरू किया। बहुत सारे साथी यहाँ, लड़के भी हमारे साथ जुड़े हैं, पुरुष साथी भी जुड़े हैं, तो ऐसा ना माने कि पुरुषों के समय ही नहीं होते या पुरुषों को रोना ही नहीं आता। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे पुरुष साथी ऐसे हैं जो सच में उनको रोने के लिए, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा बना दिया गया, अरे लड़का तो कभी रोता ही नहीं है भाई, लड़का की तो कोई भावना ही नहीं, वो रो ही नहीं सकता, वो तो मजबूत है, और लड़की तो तुरंत रो पड़ती है। नहीं, तो इस चीज से हमारी ये समझ बनी कि दोनों को ही भावनाओं की सख्त आवश्यकता है इस दौर में, दोनों को ही बराबर की शिक्षा की जरूरत है। तो इन सारी चीजों को समझ बनाते हुए मैं उन नौजवानों को, उन महिलाओं को ये कहना चाहूंगी कि समस्याएं बहुत आती हैं, बस अपने सपनों को उड़ान दो। जैसे ही आप सपने देखना शुरू करोगे, उड़ोगे, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। अपने आप कमजोर बिल्कुल मत मानो खुद को कि हम कमजोर हैं, कि हम लड़कियां हैं, या मैं घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, या मैं खाना बनाती हूँ। उस काम को उसी प्रेम के साथ कर, ये मेरे परिवार का एक हिस्सा है, मुझे ये काम भी करना है पर मुझे उड़ना भी है।
1: सुनीता जी, दोनों को ही बहुत अच्छा, वेरी गुड आपने जो काम किया है। तो अभी हम थोड़ा आपको रोकते हैं, हमारे सरपंच साहब आज देर से जुड़े हैं। सरपंच साहब, मैं आपका इस प्रोग्राम में धन्यवाद करता हूं, आप अपना परिचय देते हुए अपने गांव के बारे में बताइए।
4: एक मिनट गुरुविंदर जी, हम सरपंच जी से बात करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि सुनीता जी, हम आपकी बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। आपने थिएटर की बात की, हम भी थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है, जो शब्द थिएटर हमें सिखाता है, जो कॉन्फिडेंस हमें थिएटर देता है, वो आप में हमें दिखा। सबसे बड़ी बात जो मुझे खुशी है कि इस राम राम हरियाणा कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज आई जो सभी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, युवतियों के लिए एक रास्ता बना सकती है। आप इस काम में ऐसे ही बने रहिए और इस प्रोग्राम में भी बने रहिए। जो आज के हमारे मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने महिलाओं के लिए आज तक अपने इस कार्यकाल में क्या काम किया, क्या वो आपके सोच के साथ सहमति रखते हैं, नहीं रखते हैं। हम स्वागत करते हैं आज के मेहमान का। गुरविंदर जी, आपने कुछ सवाल पूछना है, या जैसे आपने कहा सरपंच जी, आप अपना परिचय दीजिए और अपने परिचय के साथ साथ आप अपने गाँव की बात कह दीजिए। जब से आप सरपंच बने हैं तो क्या आपने काया पलट की अपने गांव में, क्या कार्यकाल में आपने क्या अच्छा काम किया, उसके बारे में बता दीजिए। जी स्वागत है। गुरविंदर जी आप बात करिए।
1: सरपंच साहब
5: अनम्यूट कीजिए माइक को,
1: अनम्यूट कीजिए अपने माइक को।
4: अरे वो तो तब करेंगे ना जब वो कुछ बोलेंगे। जी
7: जी जी सर।
4: सरपंच जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
7: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: हमने परिचय देते हैं, अपने गांव के बारे में बताइए।
7: सर मैं गांव भोगपुर से हूँ, देवेंद्र वालिया, ब्लॉक सरस्वती नगर, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से।
4: जी जी,
5: आप गांव के बारे में बताइए सरपंच साहब।
7: सर गांव का तो देखो, अपने यहाँ पंचायत फंड तो मेरे पास है नहीं गाँव का, फिर भी अब गांव का जितने भी काम हो सके मंत्री जी से भी फंड दलवा के, जो भी हमने, जैसे जोहड़ का, मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जोहड़ की थी गांव में, तो श्याम सिंह राणा जी कृषि मंत्री, अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और अपने ही ब्लॉक से हैं वो, विधायक भी पहले भी रहे, 2014 में भी विधायक रहे वो। तो जैसे जोहड़ का सबसे ओवरफ्लो के गाँव वालों को बड़ी परेशानी थी जोहड़ से, हमने उसका जोहड़ का कार्य कराया, सफाई कराई, खुदाई कराई, और एक जोहड़ जो बंद था वो मच्छी पालन के लिए चलाया है। इस बार बोली में भी गया ठीक, बोली पंचायत फंड मेरे बाद भी हमारी, तो जैसे 1.5 साल की सरपंची रहेगी, उसके बाद भी आने वाले सरपंचों को फायदा मिलेगा उससे, और दूसरे जोहड़ को भी प्रोग्राम में ला रहे हैं ताकि मच्छी पालन का इसमें भी काम शुरू किया जा सके, इससे भी पंचायत की अपनी आमदन हो। खुद की तो कोई और फंड नहीं है पंचायत का किसी भी तरह का।
4: टपक पढ़ाई नहीं, अच्छी बात कर रही थी, आप सुन रहे थे।
5: तो सरपंच साहब, आपकी पंचायत में फंड तो आने लगा क्योंकि आपने तालाब की जो बोली है वो मछली का लिए ठेका दे रखा है, मछली पालन के लिए।
7: हाँ जी, बस यही है।
5: आपका गाँव, आपका गाँव कितना बड़ा है और आपके गांव में कितने पंचायत में कितने महिला पंच हैं और कितने पुरुष पंच हैं, और महिलाओं के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ी है मेरे हिसाब से वो हरियाणा में झांसी की रानी वर्गी का रूप ले रखी, क्योंकि उन्होंने
7: जी, मैं जो संघर्ष किया उनके विचार
5: आप सुन रहे थे ना, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष किया कि एक रुपए में भी उन्होंने घर घर जाके एक फॉर्म फिल किए और उसके साथ पढ़ाई की और अपने घर को भी संभाला और अपने एजुकेशन को भी संभाला। तो आपने महिलाओं के लिए क्या किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
7: सर महिलाओं के लिए हमने एक तो ना फैक्ट्री लगाई है अपने गांव के पास ही, जिससे वो कुछ औरतों का था भी कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे हमारे को
8: काम करने का साधन मिले, जैसे डिस्पोजल ग्लास वगैरह, डिस्पोजल ये प्लेस भंडारों में जैसे यूज होते हैं वो, उसमें महिलाओं को ही काम दिया गया है सब। और सिलाई सेंटर है गांव में दो।
6: ये आप जो सरपंच साहब फैक्ट्री लगाने की बात कह रहे हो, ये ग्राम पंचायत ने लगाई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने?
8: नहीं सर, अपने बेस पे ही लगाई है हमने ग्राम पंचायत ने, ताकि महिलाओं को काम दिया। सरपंचायत बेस पे तो पॉसिबल था ही नहीं ये काम।
6: हमें वही तो कह रहा हूँ, ये आपने कहा ना फैक्ट्री लगाई है, तो ये तो आपका एक पर्सनल उद्यम है, उसमें महिलाओं को काम मिल रहा है, ये आप कहना चाह रहे हो?
8: हाँ जी, हाँ जी।
6: चलिए, स्वयं सहायता समूह है आपके गांव में क्या?
8: नहीं सर।
6: कितनी आबादी का गांव है
8: ये? होगा सर 1250।
6: तो स्वयं सहायता समूह तो बनाने चाहिए आपके, आपके यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में मदद करेंगे वो, क्यों गुरविंदर जी?
1: नहीं सर, वो तो बनाने चाहिए। सरपंच साहब, एक जो आप बोल रहे थे कि आपने जो 40% कोरम के साथ ग्राम सभा करवाई थी, हमें उसके बारे में बताए थे, उसमें कितनी महिलाएं आई थी और कितने पुरुष आए थे, कुल कितने लोग आए थे उसमें?
8: सर उसमें 240-245 की हाजिरी थी, जिसमें आधे से ज्यादा महिलाएं थी सर, मोस्टली एससी कास्ट की तरफ से ज्यादा महिलाएं थी।
1: क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था सभी पंचायतों के लिए, 40% लगभग आधा गांव को हमने एक मंच पे इकट्ठा करना होता है।
8: हाँ सर, मोस्टली
6: मैं गुरविंदर जी, रुको रुको रुको रुको, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। ये जो कोरम पूरा करने के लिए बहुत सारे गांवों में घर घर जाके भी तो दस्तखत कराए गए हैं
8: सर, वो
6: ऐसा तो नहीं है? या ये जो 240, एक मिनट सरपंच साहब, ये जो 240 लोग आप कह रहे हो कि ग्राम सभा में थे, जिसमें महिलाएं भी थी बड़ी संख्या में, ये सब ग्राम सभा में मौके पर प्रत्यक्ष मौजूद थे?
8: हाँ सर, फोटो हुई है उनकी, जियो टैग से शक्ति साहब ने फोटो ली हुई है।
6: चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो अभिनंदन करना बनता है आपका। अभी पर्यावरण दिवस पे ग्राम सभा की थी क्या?
8: पर्यावरण पे भी की थी सर, उसमें लोग कम आए थे, उतने लोग नहीं आ पाए जितने पहले, जब सरकार ने पहली बार कहा था ना 40%, तो इस बार पर्यावरण दिवस पे इतने नहीं आए।
6: अब पाई स्कोर क्या आपके गांव का, पता है आपको?
8: मींस मतलब सर?
6: मींस मतलब यो कि आपको पाई के बारे में अभी बताया नहीं किसी ने। पाई पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स नाम की एक चीज होती है, वो आपको कहीं जिक्र नहीं हुआ उसका किसी मीटिंग में आज तक?
8: नहीं सर, हुआ नहीं।
6: खंड की किसी बैठक में या आपके यहाँ जिले के किसी अधिकारी ने कहीं चर्चा की हो?
8: नहीं सर, मैंने ऐसा सुना ही नहीं कहीं।
6: चलिए, तो आज आपके लिए एक काम हम दे रहे हैं, सौंप रहे हैं, आप तो इस कार्यक्रम के तुरंत बाद अपने सेक्रेटरी से बात करें और उससे पूछें कि आपकी पंचायत का पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसका स्टेटस क्या है। और पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एक तरह का सूचकांक है, मापक है, जिससे ये पता चल जाता है कि हमारी ग्राम पंचायत ने विकास के किस मोर्चे पर कितना काम कर लिया है, हम कहाँ खड़े हैं या कहाँ पड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं तो कहाँ खड़े हैं और कहीं गड्ढे में पड़े हैं तो कौन से गड्ढे में पड़े हैं, उसका अनुमान लग जाता है। तो एक पाई इंडेक्स क्या है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स क्या है, ये आप अपने सचिव से समझने की कोशिश करें, और आपकी पंचायत का स्टेटस, उसकी स्थिति क्या है, ये समझने की कोशिश करें। ग्राम गौरव पट है आपके गांव में?
8: जी है।
6: कब आखिरी बार उस पे निगाह डाली थी आपने?
8: सर हो गए होंगे 20-22 दिन।
6: तो साफ सुथरा है?
8: हाँ जी।
6: या खंडर हो गया?
8: नहीं नहीं साफ सुथरा है सर, वो ना चौक पे ही है गांव के वैसे भी,
6: लेकिन साफ सुथरा व्यवस्थित है।
8: हाँ जी हाँ जी।
6: चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लगा ये सुन के। भारत जी कुछ कहेंगे?
4: जी बस मैं तो चाहूंगा कि सुनीता जी अगर कोई प्रश्न आज के हमारे मेहमान सरपंच जी से करना चाहेंगे, सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, किस तरीके से, जिस तरीके से आपने संघर्ष किया, तो इस तरीके से ये उसमें एक साथी, एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं।
9: जी मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल हैं सरपंच साहब, और आप गांव के मुखिया हैं, तो मेरा मानना ये है कि आपको हर एक ऐसे तबके के बारे में पता होगा कि जहां जहां उनकी जरूरतें हैं। तो एक तो मेरा ये है कि आपने जो अपने लेवल पर जो वहां पर फैक्ट्री लगाई है, तो उसमें कितनी महिलाएं काम करती है और क्या हम उनको वेतन दे रहे हैं या फिर वो सामान को जो प्रोडक्ट वो बनाती हैं उसको वो मार्केट में खुद बेचने जाती हैं या आपने उनके कुछ मार्केट के लोगों के साथ संपर्क कराए हैं, किस तरह से वो उसको चला रही हैं, एक बार। दूसरा मेरा ये है कि महिलाओं और लड़कियों को लेकर कि हमारे गांव का जो स्कूल है
8: जी,
9: उसमें कितने विद्यार्थी हैं और उसमें लड़कियां और लड़कों का रेशो क्या है, क्या ज्यादातर विद्यार्थी सरकारी स्कूल में ही जा रहे हैं या फिर वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भी जा रहे हैं?
8: ज्यादातर विद्यार्थी मैडम प्राइवेट स्कूल की तरफ ही जा रहे हैं
9: जी। उसका कारण सर?
8: गांव में ना मैडम शुरू से ही जैसे हम भी छोटे थे ना तो वहाँ ना प्राइवेट स्कूल थे दो आसपास के गांव में, सबसे ज्यादा जो बेहतर स्कूल थे वो हमारे गांव में ही थे। तो रुझान शुरू से ही ना हमारे गांव का शुरू से ही प्राइवेट की तरफ है।
4: मैं देख रहा हूँ इधर
8: छोटा सा गांव है मैडम, मेरे ख्याल उस टाइम की बात है ये 1990 में भी, मतलब मोस्टली ना सबसे ग्रेजुएट गांव हमारा ही माना जाता था आसपास के गांव में, भोगपुर गांव
9: जी। तो सतपन साहब ये जो अपना गांव है इसमें स्कूल जो है वो 12वीं तक है या 10वीं तक या फिर 8वीं?
8: प्राथमिक है, 5वीं तक ही है।
9: 5वीं तक ही है, उसके बाद तो फिर प्राइवेट स्कूल। क्या आपने या ग्राम पंचायत ने या गांव के लोगों ने

0: तीन
1: हाई
0: लाख
1: स्कूल
0: जो फाइल
1: कितने
0: गाना चल रहा है
1: किलोमीटर
0: ना,
1: है? किलोमीटर क्यों
0: ये
1: सर, गांव में ही
0: एसएमडी
1: है,
0: से हो गया बीच में,
1: सीनियर
0: हाई
1: सेकेंडरी
0: स्कूल है
1: स्कूल है
0: लेकिन जब हमने क्या होगा प्रॉपर
1: जी।
0: क्या
1: अच्छा
0: बताया,
1: सर
0: 25 साल की।
1: चलिए, फिर आपके
0: सर
1: गांव में नहीं पाता है
0: थोड़ा सा वो समझाइए मुझे कि जो हमने फैक्ट्री लगाई है
1: पच्चीस
0: मैं उसको इसलिए जानना चाह रही हूँ
1: किलोमीटर
0: कि अच्छी बात है महिलाओं को अगर आर्थिक
1: सर
0: मजबूती
1: है
0: भी मिल रही है और गांव के गांव में रहकर मिल रही है, क्योंकि
1: यहाँ से
0: बहुत
1: नहीं मिल
0: सारी
1: पाती
0: ऐसे
1: है,
0: दबाव होते हैं उनके पास,
1: क्योंकि
0: बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं
1: चुनौतियां
0: कि वो घरों से नहीं
1: चुनौतियां
0: निकल पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो गांव के
1: 40 में
0: अंदर ही
1: गाना
0: रहकर
1: चल रहा
0: कुछ
1: है
0: कमा
1: तो
0: पा
1: आप
0: रही हैं,
1: देख
0: तो वो
1: सकते
0: किस
1: हो।
0: तरह से
1: अब
0: रन कर
1: हमने
0: रही
1: ये
0: हैं
1: जो
0: थोड़ा
1: फॉर्म
0: सा
1: भरा है
0: स्ट्रक्चर
1: तो
0: समझने की
1: आप
0: कोशिश करना चाह
1: साढ़े
0: रही
1: सात
0: हूँ।
1: कितने बजे?
0: साढ़े
1: मैडम
0: सात
1: जैसे उनको ना एक
0: नहीं
1: स्टेटस
0: साढ़े
1: दे
0: छह तो
1: दिया
0: गजल
1: गया,
0: चल
1: जैसे
0: रही है
1: उन्होंने
0: तो
1: इतने ग्लास पे इतने पैसे हैं, इतनी प्लेट्स पे इतने पैसे
0: टाइमिंग
1: हैं,
0: क्या
1: जितना
0: हुआ
1: काम
0: वैसे,
1: करोगे
0: हमारा जो
1: आप
0: भक्ति
1: उतना
0: संगीत है
1: पैसा
0: वो कितने
1: लोगे,
0: बजे चल
1: कोई
0: रहा है?
1: दिहाड़ी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है उनका।
0: राइट, भक्ति संगीत अच्छा ऐसा कुछ है। टोटल कितनी महिलाओं को काम मिला हुआ है वहां पे?
1: संगीत
0: भक्ति
1: वहां
0: संगीत के लिए कितने
1: 25 के करीब है मैडम,
0: लोग
1: उसमें
0: हैं
1: से
0: महिला
1: 17-18
0: महिला
1: लेडीज हैं।
0: सदस्य? मुझे एक बात बताओ, ये तो अच्छा
1: काफी बड़ी
0: सत्रह
1: संख्या है।
0: सत्रह अठारह
1: चलिए
0: महिलाएं हैं
1: फिर
0: जो
1: आप हमें
0: काम
1: इसको
0: करनी
1: बता
0: है,
1: दिया सॉन्ग
0: किस
1: तो
0: एज की
1: फिर
0: हैं
1: आप
0: वो,
1: भक्ति
0: उनकी
1: संगीत नहीं
0: उम्र
1: चलेंगे।
0: क्या
1: भक्ति
0: है?
1: संगीत को कितने बजे चलना है?
0: अच्छा
1: मोस्टली होंगी वो जी 30+ ही
0: यहाँ
1: है
0: भक्ति
1: लगभग
0: संगीत चल
1: सर,
0: रहा है 6:21,
1: 30+ है।
0: बिल्कुल
1: और
0: सॉन्ग बजे। चलिए आपने
1: हम ये
0: कभी
1: चलने
0: ये
1: दो,
0: देखा है
1: फिलहाल
0: कि
1: सॉन्ग्स
0: गांव की
1: लगाए फिर
0: लगभग
1: टाइम लगे
0: सारी
1: स्टार्ट होने
0: लड़कियां
1: में।
0: वो स्कूल कॉलेज तक जाती हैं, यूनिवर्सिटी तक, या कहीं ब्रेक होती है उनकी पढ़ाई?
1: नहीं ऐसा तो नहीं है, अब तो सब जागरूक है सर मैडम, अब तो कोई ऐसा इशू है नहीं। जिसने खुद ही नहीं पढ़ना वो तो बात अलग है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से कोई है नहीं ऐसा भी, बच्चा पढ़ना चाहता और वो पढ़ा ना रहे हो, ऐसा तो कोई इशू है नहीं।
0: आपके पास कभी भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई
1: नहीं
0: लड़कियों को
1: आई,
0: लेकर की थी?
1: नहीं आई।
0: चलिए
1: और मैं
0: ठीक है,
1: मैडम आपकी ठेके वाली बात बड़ी गौर से सुन रहा था, क्योंकि मैं खुद भी वाइन कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ।
0: चलिए ललित
1: हाँ
0: जी।
1: तो
0: जी वहां मिलते हैं सभी।
1: और पहले क्या था सर, जब मैंने 2007 में इस लाइन में आया था ना मैं, तो क्या होता था शराब के ठेकेदार से जो इनकम होती थी ना, गवर्नमेंट पहले 1 रुपया बोतल
0: एक रुपया
1: देती
0: बोतल,
1: थी
0: बिल्कुल
1: और 2 रुपये बोतल बियर की, वो पंचायत फंड में जाता था ठेकेदार से जो कमाई होती थी। और मेरे ख्याल लगभग 2009 के बाद शायद ये प्रोसीजर ही बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, और सारा जो प्रॉफिट है वो खुद ही रखते हैं, वो पंचायत को देना बंद कर दिया।
0: चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सरपंच जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कितने समय से सरपंच है अपने गांव के,
1: मैं तो इसी प्लान हूँ सर, बस पहली बार बना हूँ,
0: कितना टाइम हो गया?
1: 3.5 साल हो गए लगभग।
0: 3.5 साल में कोई ऐसा कार्य आपने किया जो पिछले जो सरपंच बने हैं उन्होंने ना किया हो और आपके मन में आया हो कि मुझे ये काम करना चाहिए? कोई ऐसा काम जो आपने किया हो जिसको आप कह सकते हैं कि ये काम मैंने किया है और मैं अपने गांव वालों के लिए ये सही काम किया है?
1: सर यही था, जैसे पहले तो सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे थे नहीं गांव में,
0: जी
1: और हमारे यहाँ एक कांड हुआ था सुर्खियों में था, वो ट्रिपल मर्डर केस खेड़ी लखा सिंह के पास,
0: चलो खैर हम उसकी बात तो
1: वो
0: नहीं करेंगे, आप ये बताइए
1: मैं बता
0: कि
1: रहा ना, वो
0: हाँ
1: मेरे गांव के सीसीटीवी कैमरों से ही कैप्चर हुए थे वो बदमाश,
0: जी, यानी कि
1: मतलब फायदा ही हुआ था।
0: जो जानकारी उससे मिली और उसके बाद कोई और काम?
1: जैसे जोहड़ का ये अभी बता के आता
0: हाँ
1: मैं,
0: हाँ हाँ
1: आज तक हुआ नहीं सर, ये बहुत परेशानी थी।
0: पर हरियाणा
1: और
0: से
1: एक और था सर, मोस्टली ना नालियां जो थी ना ओपन ही थी और वो टूटी हुई थी, कभी 50 साल पहले की बनी हुई होंगी नालियां, मोस्टली सब में पाइप डले हैं, अच्छे से कवर है, गंदगी नहीं बाहर है।
0: ललित जी आप क्या कहना चाहते
1: सरपंच
0: हैं
1: साहब,
0: जी? अब जी प्रीतम जी पहले आप बताइए, आप पूछिए पहले फिर उसके बाद ललित जी। जी
2: सर मेरा सरपंच साहब से एक सवाल था। सरपंच साहब कह रहे थे 1990 से इनका गांव शिक्षित था, इलाके में सबसे ज्यादा शिक्षित था, ऐसा
1: जी
2: क्या कारण है कि 90 से लेके और 26 तक 36 साल में आपके गांव के शिक्षित लोग होने के बाद भी बच्चों को जागरूक करके प्राइवेट स्कूल की तरफ लेके गए और सरकारी स्कूल की तादाद वो आपने 32 और 35 के बीच में ला दी, ये क्या कारण था?
1: सर आप ही देख लो ना, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे होंगे।
2: हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं और एक सरकारी में जा रहा है।
1: हाँ प्राइवेट में जा रहे हैं ना, ऐसे ही है सर, बच्चे चाहते तो सब है सरकारी स्कूल चले, लेकिन मेरे खुद के बच्चे भगत सिंह तो सर देश में पैदा हो लेकिन पड़ोसियों को हो जाए, मेरा ना हो।
2: सर पहले सर हमारे पास एक गांव था, गांव जावा पंचायत है, महिला सरपंच है, अगर आप वहां महिला सरपंच ने पहले आके पहल करके अपने बच्चों को

0: स्कूल में एडमिशन करवाया और उसके बाद उन्होंने स्कूल की तादाद 350 बच्चों की कर दी, स्कूल के अंदर ही लाइब्रेरी। तो पहले ये आप गांव के प्रधानमंत्री हो, आपने पहल करके आपके गांव के बच्चों की स्थिति सुधर सकती है।
1: अरे एक बात सुनो ना, आपने 90 की बात की, मैं 90 की बात कर रहा। 90 में तो मोस्टली बच्चे प्राइवेट जाते नहीं थे, गवर्नमेंट में ज्यादा जाते थे 90 के दौर में। और मैं वो बात बता रहा, जब 90 में भी हमारे प्राइवेट ही जाते थे, तो अब कहाँ सरकारी पे आ जाएंगे।
0: आपके गांव में
1: 90 में
0: 90 के
1: मोस्टली,
0: तो
1: 90 में मोस्टली प्राइवेट में नहीं जाते थे, गवर्नमेंट में स्कूल में जाते थे। हमारा तब से ही उल्टा है, तब 90 से प्राइवेट में जाते थे, गवर्नमेंट में तब से ही नहीं जाते थे, जब सब दुनिया जाती थी। तो अब कैसे हो जाएगा, 2000 आज तो 26 है, वापिस कैसे आएंगे वो गवर्नमेंट वाले प्राइवेट पे जाए, समझ में आता है सर? प्राइवेट वाले वापिस गांव कैसे आएंगे?
0: सुनीता जी का कोई सवाल है?
2: हाँ, मैं बस थोड़ा सा इसमें शामिल करना चाहती हूँ सरपंच साहब कि मेरा बेटा जो है वो 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा है। और बचपन छोटे की जब बात करूँ तो बिल्कुल छोटा था तो उसके दादा ने उसको सेंट मैरी में भेजा, सेंट मैरी स्कूल में। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है। और जब मैंने वहां पर देखा, फिर उसको दून पब्लिक स्कूल में किया हमने, थर्ड फोर्थ क्लास में। और तब से मैं यहाँ रोहतक में गरीब प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पढ़ाती थी। वो मजदूरों के बच्चे जहाँ छोटे छोटे लोगों ने सेंटर खोल रखे थे कि आ जाओ 300 रुपये फीस दे देना, 200 दे देना, इस टाइप में, वो उनके पास वो भी नहीं होते थे। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अरे मम्मा, क्या गंदे बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ाती हो। उस समय मेरे पास दरी भी नहीं होती थी और मैं अपने बेड की चद्दर उतार के बिछा के तब हमने यहाँ रोहतक में उनको पढ़ाना शुरू किया। और जब मैंने देखा कि मेरा बेटा तो इंसान ही नहीं बन रहा है, वो तो पता नहीं क्या बनता जा रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको वहां प्राइवेट स्कूल से दून पब्लिक स्कूल, अपने इंडिया की शायद 9 ब्रांच है, जो कैथल में एक ब्रांच है, कैथल रोड पे नरवाना के पास, वहां से निकाल के तुरंत रोहतक के ये सेक्टर 5 वाले स्कूल में, कबीर कॉलोनी, जहां पर लोग ये कहते हैं अरे ये बस्ती तो ऐसी है, ये बस्ती तो वैसी है, वहां पे उस स्कूल में मैंने एडमिशन कराया। टीचर्स ने कहा बेटा ये आप लोगों के लिए नहीं बना ये स्कूल, आप क्यों आए हो यहाँ पर। उसने आते ही मुझसे सवाल किया कि मम्मा वो स्कूल मेरे लिए नहीं बना है, ये हमारे स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा है। मैं और मेरे हस्बैंड उस स्कूल की प्रिंसिपल के पास गए, उनसे बात करी कि आपने बच्चे को क्या कहा ये और क्यों कहा। वहां पर केवल कुछ कुछ बच्चे जाते थे, छोटे छोटे, लड़ाई झगड़े ये करना, टीचर्स आराम से बैठे हैं सारी चीज, लेकिन वहां इंटरफेयर किया। मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ जो कभी स्कूल ही नहीं गए, उनको स्कूल के लेवल पे तैयार करने के बाद 2000 बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ चुकी हूँ, वो भी सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में वो लड़कियां पढ़ लिख के आज MA कर रही हैं, एक राहुल है इंजीनियरिंग कर रहा है MDU से। और आज उस स्कूल का स्ट्रक्चर देखिए, वहां पर पानी की सुविधा है, वाटर कूलर लगा हुआ है, टीचर्स टाइम पर आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि लोगों की मानसिकता जो जकड़ी गई है, जो पकड़ ली है, उनको ब्लॉक कर दिया है, बस उनको खोलने की जरूरत है। और वो खोलेंगे कब, जब आप और हम बैठ कर एक चर्चाएं करेंगे कि सही तरीका है क्या। शुरू जैसे आपने किया कि भगत सिंह तो सब चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं भगत सिंह, है ना, वो तो हमारे खून में बसते हैं, और ऐसे हजारों लाखों भगत सिंह हैं जो हमारी रगों में बहते हैं, तो बस शुरुआत करने की जरूरत है।
1: जी
2: तो
1: जी
2: सरपंच साहब, मैं यही कहना चाहूंगी कि हम अपने
1: बहुत
2: सरकारी
1: सही है,
2: स्कूलों
1: बहुत
2: को
1: सही
2: भी
1: है।
2: बचाएं।
1: भारत जी,
3: जी सर,
1: मैं आपकी चर्चा में इस समय बीच में था नहीं, लेकिन एक श्रोता का कॉल मेरे नंबर पर आ गया फॉरवर्ड होकर,
3: प्लीज सर।
1: मैं उनको आपके साथ जोड़ रहा हूँ। विजेंदर जी हैं, ये चरखी दादरी, ये प्रीतम जी के क्षेत्राधिकार के प्राणी हैं और आपके कार्यक्रम को सुन रहे थे। इनके मन में सवालों का या टिप्पणियों का एक बवंडर उठा हुआ है। मैं विजेंद्र भाई, बताइए क्या कह रहे थे आप, जरा आप बोलिए।
4: ये मैं कह रहा था भाई, जैसे सभी बता रहे हैं भाई, प्राइवेट स्कूल ज्यादा खुल रहे हैं और सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे हैं। और हम और आप सभी बोल रहे हैं भाई, सरपंच साहब पहले पहल करे, कोई कहता है जी वो पहले पहल करे, इससे कुछ नहीं होगा। अगर सरकार चाहे तो सरकार कॉलम को दोबारा सर से चला सकती है, उसके लिए कॉलम बनाना होगा। जो भी जवान करेगा उसके बच्चे सरकारी स्कूल में ही दाखिला लेंगे, अन्यथा सरकारी स्कूल को नौकरी भजवाई नहीं कर सकता। अगर सरकार इस तरह कोई कॉलम लेके आ रही है तो सर हम अपने सरकारी स्कूलों को चला सकते हैं।
1: अब विजेंद्र भाई मैं कमेंट करूं या आप में से कोई इस पर जवाब देना चाहेगा क्या? मैं भी इस पे कहूंगा, लेकिन भारत जी या सुनीता जी, ललित जी, आपने इसमें कुछ कहना है क्या?
3: जी चौहान सर, मेरा ये कहना है कि देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, या हर कोई अपने विचारों को लेकर के, अपने डिसीजन को लेकर के आजाद है, और मेरे हिसाब से हर कोई अपना आजाद है, अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये वो सब चीजों के लिए फैसला लेने के लिए ऐसा फोर्स किया जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पर ये जरूर सोचने की बात है कि हमें व्यवस्थाएं और इस चीज पर जरूर मंथन करना चाहिए कि किस तरह से हम जो सरकारी तंत्र है, सरकारी स्कूल है, इसकी प्रणाली को, शिक्षा जो है उसके स्तर को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, सुविधाएं को जो मिलती है उन्हें और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि अपने आप लोग अट्रैक्ट हों इस साइड पर।
1: चलिए
4: सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सभी को
5: सारे सोचा हो जाकर पड़ोसिया का।
1: हेलो, हाँ जी,
4: हेलो सर, मैं ये कहना चाहूंगा नौकरियां सबको सरकारी चाहिए, बच्चे सबके प्राइवेट हो जाएंगे।
1: नहीं, ये आप जो कह रहे हो ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, नारा भी अच्छा है, लेकिन आपको, क्योंकि भारत कोई तानाशाही देश नहीं है, भारत कोई ऐसा धार्मिक राज्य नहीं है ईरान इराक की तरह, जहां कोई खमेनेई या कोई सद्दाम हुसैन ये फैसला कर देगा। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। 1947 की 15 अगस्त को जब हम आजाद हुए ना, हम तो हमारे पूर्वजों ने तय किया कि हम एक प्रजातांत्रिक देश होंगे, यहाँ अमुक अमुक तरह की स्वतंत्रताएं रहेंगी, ये बंधन रहेंगे। तो भारत में, जैसा ललित जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं, आप बाध्यता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के या प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं होगा। एक बात तो ये, दूसरी बात जो मुझे भी समझ में आती है, निश्चित तौर पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, ये अच्छी पहल हो सकती है, कुछ लोग स्वयं से शुरुआत करें, ये एक बात हो सकती है, परंतु दूसरे पक्ष पर और काम करना ज्यादा जरूरी है कि जितने हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ाई की गुणवत्ता, वहां पे संसाधनों की उपलब्धता, वहां पे उनकी समस्याओं का निरंतरता में समाधान, ये सब करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार बखूबी कर रही है। सरकारी स्कूल, रुकिए रुकिए, विजेंद्र भाई पूरी करने दीजिए आपकी, मैंने दो बातें सुन ली। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी स्कूल बंदी की कगार पर क्यों हैं, इस पर, या जहां पर वो बंदी की कगार पर हैं, स्कूल बंद होते हैं विद्यार्थी न होने के कारण, हरियाणा में जो हुए हैं कुछ स्कूल हमने मर्ज किए हैं, जो विद्यार्थी अगर नहीं हैं तो वहां पर जबरन आप स्कूल सरकारी खर्चे पे क्यों चलवाना चाहते हो? और विद्यार्थी किसी गांव के स्कूल में, ये सरपंच साहब बता देंगे थोड़ा बहुत अनुभव, भाई सरपंच साहब लो ये तो सभा से आउट हो गए। खैर, मैं ये समझता हूँ 5:02 हो गए हैं आज आज, तो विजेंद्र भाई इस विषय को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा, राम राम हरियाणा का समय समाप्त हो गया। लेकिन हम सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूल, कौन अच्छा कौन बुरा, क्या सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर देने चाहिए? पर प्राइवेट स्कूल कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या पाकिस्तानी आर्मी के थोड़े ही हैं, आईएसआईएस के थोड़े ही हैं, हमारे अपने भारतीय लोगों के हैं, हरियाणवी लोगों के उद्यम हैं, और भारत में उद्यम चलाने का सबको अधिकार है, तो हम उनके दुश्मन भी ना हों। ये कुछ ऐसा ऐसा हो जाएगा जैसे कुछ लोग हमारे भारत के बड़े उद्योगपतियों को गाली देने का ठेका उठा के चलते हैं, सुबह से शाम उनको गाली देंगे, अरे भी भारत के ही हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे वो कुछ लोग अगर बड़े उद्योगपति हो गए तो वो बड़े काम भी कर रहे हैं, बड़ा योगदान भी दे रहे होंगे कहीं ना कहीं व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में।
3: इसमें मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, किताबें,
1: एक बार ललित जी की टिप्पणी सुन लो, फिर मैं आपकी दो वाक्य आपके सुन के आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, फिर किसी और दिन स्कूलों पर बात करेंगे। हाँ बताइए ललित जी, आप कुछ कह रहे हो?
3: चौहान जी मैं ये कह रहा था कि देखिए किताबें भी वही हैं, एजुकेशन भी ऑलमोस्ट वही है, क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सब सिमिलर सा ही है। जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है इस पर यकीनन चर्चा हम कभी करेंगे, बट सब कुछ सेम होते हुए भी ऑलमोस्ट सिर्फ जो सुविधाएं और देखने का जो नजरिया है
2: बिल्कुल
3: और वो जो है उसका जो अभाव है ना चीजों का, उस पर काम किया जाना चाहिए। और इनफैक्ट मार्केटिंग भी अच्छी की जानी चाहिए जो सरकारी स्कूल है उनको लेकर के। प्राइवेट स्कूलों की मार्केटिंग और हाइप इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पर अगर एक किताब मुझे 2000 3000 की भी खरीदनी पड़े तो मैं खरीदने के लिए मंजूर है, मुझे वही किताब मुझे सरकारी स्कूल में 10 रुपए में मिले तो वो मंजूर नहीं होती मुझे। तो मेरे हिसाब से सरकारी स्कूलों पर उसको थोड़ा ध्यान नहीं दिया जा रहा है किसी भी वे में।
1: जी करेंगे, हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। हमने क्या क्या बेहतर किया मैं बताऊंगा किसी अगले कार्यक्रम में, आज समय नहीं है। मैं चाहूंगा भारत जी कार्यक्रम को क्योंकि वो कमांडिंग पोजीशन में है, ड्राइविंग सीट में बैठे हैं, भारत जी हम सब की ओर से कार्यक्रम को संपन्नता की तरफ ले जाएं। प्रीतम जी अगर कहेंगे तो मैं ममता जी का फोन उठा सकता हूं, मेरे पास आया हुआ है।
6: हाँ ममता जी को सुनिए सुनिए सर, हम ममता जी का फोन इग्नोर नहीं कर सकते।
1: हाँ लेकिन कट गया ममता जी का फोन, अगर उन्होंने तुरंत डायल कर लिया तो हम सुन लेंगे, वरना भारत जी मैं तो कमान आपको सौंप चुका हूँ विराम के लिए।
6: आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इस कार्यक्रम में जब भी हम कोई चर्चा करते हैं वो सार्थक होती है और हमारी श्रोता सुनते हैं, और हम देखते हैं कि जब श्रोताओं का लेवल बढ़ता है तो पता चलता है। आज मैं
1: लीजिए ममता जी आ गई,
6: जी बात
1: ममता जी आ गई,
6: जी बात करिए सर।
1: हाँ ममता जी बताइए।
7: राम राम सर सभी को, राम राम हरियाणा
1: जी, राम राम राम राम ममता जी। बताइए जल्दी से, कमेंट करिए आप क्या कहना चाह रहे हैं क्योंकि समय कम है अब हमारे पास, हम 5 मिनट, हमारी गाड़ी लेट हो रही है, हो चुकी है।
7: कि आज निर्जला एकादशी है, उसकी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और ममता जी ने आज जलेबी बांटी है।
1: जलेबी बांटी ममता जी ने, वाह बहुत बढ़िया। मैं निर्जला एकादशी पर ये कहूंगा ममता जी के सुर में सुर मिलाते हुए कि अगर आप गौशाला नहीं गए हैं तो गौशाला जरूर जाना चाहिए।
7: गाय हमारे घर में ही है सर।
1: आपकी तो मौज हो रही है, मैं आप तो थोड़ी कहूँ था, मैं तो ललित जी तक कहूँ था और भारत जी तक कहूँ था, ये सुनीता जी से कह रहा था, प्रीतम जी से कह रहा था और सुनने वालों से कह रहा था जो हमारे मित्र आज।
3: हाँ चौहान जी किस दिन अगर मौका लगा तो आपको यहाँ सिडनी की गौशाला भी दिखाऊंगा।
1: हाँ सिडनी नहीं, मैं तो हम तो बाहर देखे, आप सिडनी का न्योता भेजो, हम तो दूर आ जाएंगे आपकी गौशाला देखने।
3: जी सर बिल्कुल
1: जी भारत जी।
6: चलिए अभी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज मुझे एक बात अच्छी लगी जो सुनीता जी ने बताई, वो ये कि आपके पास साहस होना चाहिए, आपको अगर शाना बशाना हम एक शब्द यूज करते हैं काम करना है सबके साथ तो आपको उनके मैयार तक आना होगा और वहां तक हमें पहुंचना होगा। और सुनीता जी जैसी महिलाएं हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत तरक्की आगे करेंगे। सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर वीरेंद्र सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रीतम जी आपका भी शुक्रिया, और हमारे जो मेहमान जुड़े थे उनका भी शुक्रिया, और साथ में ललित जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को मेरी ओर से राम राम हरियाणा,
1: राम राम राम राम सबको राम राम।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

मिल गए हो तो ये लगता है कि यहाँ

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: घी दालच में, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 12। आज का कार्यक्रम आधारित है गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पर। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.0 FM रेडियो वितस्ता और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। पेश है वो कार्यक्रम जो आपकी यादों में सबसे मीठे पल घोल देता है, यानी कि सुनहरे पल। आज का ये प्रोग्राम एक ऐसी हस्ती के नाम है जिनकी आवाज ने पीढ़ियों को प्यार करना, खुश होना और जिंदगी जीना सिखाया। 40,000 से ज्यादा गाने, 16 भाषाएं, 6 नेशनल अवार्ड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SP बालासुब्रमण्यम, यानी हमारे सबके प्यारे बालू सर की। आज हम उनके बचपन की मासूमियत से लेकर संगीत के समंदर में उनके अद्भुत सफर तक चलेंगे। उनका जन्म 4 जून 1946 को नेलोर, आंध्र प्रदेश में हुआ। घर में संगीत का माहौल था क्योंकि पिता SP साबरमति एक जाने माने हरिकथा कलाकार थे। अजीब बात ये थी कि संगीत उनके खून में था, फिर भी बालू सर इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को एक आवाज का इंजीनियर मंजूर था। कॉलेज के दिनों में ही सिंगिंग कंपटीशन में जीत का सिलसिला शुरू हुआ और 1966 में तेलुगु फिल्म श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना से एक युग की शुरुआत हुई। आइए उनके उस सफर को याद करते हुए सुनते हैं वो गीत जिसने उनको पूरे भारत का चेहरा बना दिया।

ये आवाज का जादू। ये गाना सिर्फ हिंदी सिनेमा में उनकी एंट्री नहीं थी बल्कि उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पहला नेशनल अवार्ड भी था। दोस्तों, बालू सर को गाना गंधर्व कहा जाता था। ये नाम यूं ही नहीं मिला, वो हर जोन में माहिर थे। एक तरफ शंकराभरणम में शास्त्रीय संगीत की कठिनता, तो दूसरी तरफ मैंने प्यार किया में पॉप की चंचलता। उनकी सबसे बड़ी खूबी, उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी अलग अलग भाषाओं में नेशनल अवार्ड जीते। ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है। और केवल गाना ही नहीं, उन्होंने 45 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, कई फिल्मों का संगीत निर्देशन किया और यहाँ तक कि सलमान खान, कमाल हसन और रजनी के लिए डबिंग भी की। एक इंसान, प्रतिभाएं अनेक। सुनते हैं उनकी आवाज का वो रूप जिसने सिद्ध कर दिया कि वह शास्त्रीय और सुगम संगीत के बीच की दूरी को मिटा सकते हैं।

अद्भुत। इस गाने को सुनकर ही एसपीबी सर के गायन की गहराई महसूस होती है। अब चलते हैं 90 के दशक में, जब एक युवा संगीतकार एआर रहमान अपनी धुनों से दुनिया को बदल रहे थे। इस बदलाव में भी बालू सर की आवाज पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक खूबसूरत पुल बन गई। और उस दौर में एक शानदार संगम था, बालू सर की आवाज और रहमान का संगीत, और उन दोनों की जुगलबंदी युवा पीढ़ी पर ऐसी छा गई कि वो उनका गाया हुआ गाना आज भी लोगों के दिलों में राज करता है।

दोस्तों, बालू सर के हिंदी सिनेमाई सफर की बात हो और सलमान खान की बात ना हो तो ये सफर अधूरा है। 90 के दशक में बालू सर की मासूमियत और मीठी आवाज सलमान खान के लिए रोमांटिक पहचान बन गई। ये जोड़ी दर्शकों को इतनी पसंद आई कि हर दूसरी फिल्म में उनकी आवाज जरूरी हो गई। इन गानों में से एक साफ भोलापन था जो आज भी हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। पेश है उनकी सबसे बड़ी रोमांटिक सफलता जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला।

रिकॉर्डिंग के मामले में एसपीबी की गति और क्षमता पौराणिक थी। उन्हें संगीत जगत में उनकी अविश्वसनीय गति के लिए जाना जाता था। उन्होंने एक दिन में 21 कन्नड़ गाने, 19 तमिल गाने और 16 हिंदी गाने रिकॉर्ड किए थे। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, उन्होंने रिकॉर्ड समय में भी गानों की गुणवत्ता और भाव को कभी कम नहीं होने दिया। उनकी ये पेशावर क्षमता उन्हें किसी भी स्टूडियो के लिए सबसे पसंदीदा गायक बनाती थी।

ये तथ्य अक्सर लोगों को आश्चर्यचकित करता है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम ने औपचारिक रूप से शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके बावजूद उन्होंने शंकर भ्रमण और सागर संगमम जैसे फिल्मों में जटिल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए। उन्होंने खुद को फिल्म संगीत का गायक बताया, जो भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शास्त्रीय ज्ञान का उपयोग करता है। ये उनकी सहज प्रतिभा और गहन आत्म अध्ययन का प्रमाण था कि वो बिना औपचारिक प्रशिक्षण के भी शास्त्रीय गीतों को महारत हासिल कर सके।

गायक और अभिनेता होने के अलावा एस पी बालासुब्रमण्यम एक सफल टेलीविजन करियर भी बनाए। वे तेलुगु सिंगिंग रियलिटी शो पड़ोथा थियागा के होस्ट थे, जो भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला रियलिटी शो में से एक है। इस शो के माध्यम से उन्होंने न केवल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि एक दयालु संरक्षण और मार्गदर्शक के रूप में अपनी छवि को मजबूत किया। दक्षिण भारत में उनकी होस्टिंग ने उन्हें हर घर का चहेता बना दिया।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। इस टाइम जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल और आज के गायक है एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया था, पद्मश्री 2001, पद्म भूषण 2011 और मरणोपरांत पद्म विभूषण 2021। उन्होंने कुल 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अनगिनत राज्य स्तरीय पुरस्कार जीते। 25 सितंबर 2020 को कोविड-19 की जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया, लेकिन अपनी गायकी के माध्यम से वो भारतीय संगीत की एक अमिट विरासत छोड़ गए। उनकी आवाज जो क्लासिकल से लेकर पॉप तक हर तरह के भाव को छूती थी, पीढ़ियों तक श्रोताओं को प्रेरित करती रहेगी। कोविड-19 के दौरान उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी, जो दर्शाता है कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक प्यारे इंसान थे जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया। कोविड-19 के कारण संगीत का ये समंदर शांत हो गया, एक ऐसी क्षति जिसे भारतीय संगीत कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि आवाजें मरती नहीं, वो अमर हो जाती हैं। बालू सर के गाने हमेशा हमारे सुनहरे पल बनकर रहेंगे। आइए उनकी याद में उनकी आवाज

अब आज के सुनहरे पल के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं दोस्तों। एसपी बाला सुब्रमण्यम सर एक आवाज नहीं थे, वो तो एक पूरा दौर थे। उनका 40,000 गानों का सफर हमें सिखाता है कि अगर कला दिल से की जाए तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। उनकी आवाज हमेशा हमारी यादों में गूंजती रहेगी। बालू सर को हमारा अंतिम प्रणाम और भावभीनी श्रद्धांजलि। और इसके साथ ही मैं किरणी आप सभी श्रोताओं से चाहूंगी इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नए सफर में, किसी नए कार्यक्रम में, किसी और सुरीली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। सभी श्रोताओं को मेरा फिर से एक बार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 12। आज का एपिसोड आधारित था गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम पर। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश मराठा।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में तप कर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

लहर की तरह साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, तोड़ते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

रिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते हैं।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं, अलग अलग अलग अलग परछाइयों की

झील जो बरसों से बस गई है उसके सीने में जागती है तमाम रात, झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें जो मुझे न सोने देती हैं।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और हमारे आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:40। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज हम आपसे बात करेंगे हमारे हिंदी तिथि के बारे में। जैसे आज की हिंदी तिथि अगर हम देखेंगे, आज अधिक ज्येष्ठ मास चल रहा है और आज है शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी आज निर्जला एकादशी का पर्व भी मनाया गया। हम सब इन दिनों को और हमारे इस हिंदी तिथि को हमें समझना होगा, हमें याद करना होगा, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का, हमारे धर्म का एक अभिन्न अंग है। हम भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, तो हम सब के लिए, खास करके हिंदू धर्म के लिए, हमारे लिए विक्रम संवत की तिथि पता होना जरूरी। हमें अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। एक बार फिर बता देता हूं, जैसे कि आज 25 जून 2026 को अधिक मास ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी के नाम से ये दिन और ये पर्व मनाया जाता है। तो 2083 विक्रम संवत है। विक्रम संवत तिथि हम सबको याद रखना चाहिए, जानना चाहिए इसके बारे में, हमें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानना चाहिए। और मैं आपसे एक और अनुग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा, अगर आप गीता के बारे में जानना चाहते हैं तो आप learngeeta.com पर अपने आप को रजिस्टर करिए। learngeeta.com यानी गीता परिवार एक इतना बड़ा समूह परिवार है जो पूरे दिन में तकरीबन 1000 से ज्यादा कक्षाएं कराता है, और वो भी ऑनलाइन। आप अपने समय के अनुसार समय चुन सकते हैं। मैं भी इस कक्षा में बैठता हूं शाम के 7 बजे से 7:40 पर। जो भी समय आपके लिए अनुकूल है, आप उस कार्यक्रम के साथ जुड़िए, अपने धर्म के साथ जुड़िए। गीता हमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान देता है। जी हाँ दोस्तों, ये था आज का विषय, और आज मैं आपके लिए पंक्तियां नहीं लेके आया हूं, पर उससे पहले, जाने से पहले आपको मैं कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 26 जून 2026 शुक्रवार को आप दिन के लिए, पूरे दिन के लिए कार्यक्रम जो हम लाए आपके लिए वो इस प्रकार है। 5:58 पर सभा की शुरुआत होगी वंदे मातरम से, और लाएंगे आपके लिए एक प्रकाश प्रवाह। 6 बजे भक्ति संगीत होगा, और साथ में आप सुनेंगे शब्द और गुरबानी भी। 7:05 पर फौजी भाइयों के लिए एपिसोड 3 होगा, समर्पण होगा, शीर्षक पेश करेंगे नरेश शर्मा। 8:30 रंगमंच की ओर एपिसोड 1 पेश करेंगे मानव मेहरा। 9:30 सुनहरे पल एपिसोड 2 मोहम्मद रफी के ऊपर तैयार किया गया कार्यक्रम आपको सुनाएंगे, पेश करेंगे आरजे किरनी। 10:30 पर गुप्तगु होगा शिव किरमच के साथ, और संगीत की सभा जारी रहेगी। और कल शुक्रवार है, दिन के 2 बजे आपको इंतजार रहता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का, जो आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम होता है। और पूरे हफ्ते हम इंतजार करते हैं आपकी फरमाइशों का और प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम शुक्रवार को दिन के 2 बजे, और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को हम करते हैं आपके लिए, ताकि आप अपनी फरमाइश को दोबारा सुन सकें। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल, 7 बजे आप संगीत का कार्यक्रम सुनेंगे रेट्रो हिट्स एपिसोड 6। कल की कड़ी है जज्बात, पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी के बारे में, और उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम भी पसंद आएंगे। आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। टीम रेडियो वितस्ता की ओर से मैं भारत सोपोरी आप सभी का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप हमारे प्रसारण के साथ पूरे दिन रहते हैं, आपके कॉल्स आते हैं। जैसे हम 4 बजे से 5 बजे कार्यक्रम करते हैं राम राम हरियाणा, आज हमें एक कॉल आया जिसमें यह बताया गया कि आज आपके रेडियो पर राम राम हरियाणा क्यों नहीं था। उसका कारण था कि मैं स्टूडियो से बाहर था। मैं 4:20 पर आया, और 4:20 से 5:07 तक
मैं कार्यक्रम में था और वो कार्यक्रम लाइव था हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें बहुत खुशी होती है और हमें इस जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, बट कई बार हम ना चाहते हुए भी देरी हो जाती है और आप तक हम कार्यक्रम को नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। उम्मीद यही करेंगे आने वाले दिनों में हम आप सभी को, खास करके युवाओं को, कुछ अच्छी दिशा देंगे ताकि हमारा समाज एक बार फिर अच्छा बने, हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा मोहल्ला, हमारा घर सब सुदृढ़ हो जाएं, अच्छे हो जाएं, ताकि हम 2047 के विकसित भारत की ओर बढ़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ भारत सोपोरी आपसे चाहता है इजाजत। मिलेंगे कल सुबह 5:58 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।